नमस्कार, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के जिमी चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, सक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पांचवी तिथि। तदनुसार आज दिनांक 26 जून सन 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी नागौर के छिमे चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ सुनिए आईआर और इंटरनेट के जरिए ऑल इंडिया रेडियो लाइव के माध्यम से आप हमें सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आप हमें प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

दोस्तों, सुबह 9:10 से आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का, 9:20 से आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, 9:40 से आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वरिष्ठ साहित्यकार एवं समाज सेवी श्री राम कुमार तिवारी से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। 10 बजे से आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के, और 10:30 से आप सुनेंगे गाने ने त्राने ने। 11 बजे से आप सुन पाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

युवाणी का समय रहेगा शाम 5 बजे से, और 5:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। 6:05 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत लोकगीत और बचनों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर का समय रहेगा शाम 6:20 से। खेतीबाड़ी का समय रहेगा शाम 7 बजे से, और 7:30 से आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 8 बजे से आप सुनेंगे फिल्मी गजनी और कवालियों का प्रोग्राम। 8:30 से आप सुनेंगे गाने नए जमाने के, फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम हमारा यहाँ से होता है। 9 बजे से आप सुनेंगे सुगम संगीत। 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून की पहली बारिश हुई। अगले 4 से 5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में प्रस्तावित राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए हैं। इससे भवनों में ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने इस कोड के अनुपालन मैकेनिज्म को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश में भवन निर्माण के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। मुख्य सचिव ने यह निर्देश कल शासन सचिवालय में प्रदेश में एनर्जी ट्रांजिशन पर गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। मुख्य सचिव ने सरकारी भवनों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि इससे राजकीय कार्यस्थलों पर बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिला है। बैठक में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने ग्रिड की स्थिरता, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन सहित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव साझा करने का आज अंतिम दिन है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर यह दवा पिलाई जाएगी। इस दिन खुराक से वंचित रहे बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्यकर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज से उम्मीदवारों के लिए NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपए शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशूरा ए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य, न्याय और नेकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। प्रदेश भर में इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे। पाली में बांस, लकड़ी और रंग बिरंगे चमकीले कागजों तथा कपड़ों से ताजिए बनाए गए हैं। जुलूस को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। सवाईमाधोपुर में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। मातमी धुनों के साथ विभिन्न मोहल्लों से ताजिए निकाले जाएंगे। इस दौरान समाज के लोगों ने छबील लगाकर ठंडे पेय पदार्थ पिलाने की भी व्यवस्था की है। चूरू में मुस्लिम समाज द्वारा बीती रात कत्ल की रात मनाई गई और शहर से 10 से अधिक ताजिए निकाले गए। इन जुलूसों में मोमिनों द्वारा हैरत अंगेज करतब भी दिखाए गए। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। नए पासपोर्ट बनाने या पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने का शुल्क 5,000 रुपए होगा। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने का शुल्क 3,500 रुपए होगा और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए राशि 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का शुल्क 1,500 रुपए तथा 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का 2,000 रुपए है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की जा रही है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ तथा नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ये क्विज देश भर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और चिकित्सा विभाग की ओर से कल नशा छोड़ो खुशहाल जीवन जोड़ो थीम पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर में बाघ संरक्षण के प्रयास बढ़ाने और वन्य जीवों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन के उद्देश्य से 5वां रॉयल रणथंबोर इंटरनेशनल टाइगर वीक ITW आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कंजर्व इंडियाज फाइनेस्ट टाइगर थीम पर आयोजित ये कार्यक्रम 28 जून तक चलेगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के वन्य जीव प्रेमी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
1: 3 दिवसीय इस आयोजन में देश भर के नीति निर्माता, पर्यावरणविद, पर्यटन उद्योग और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल होकर बाघ संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण पर गहन मंथन करेंगे। इनमें पूर्व न्यायाधीश, पूर्व राज्यपाल, इकोलॉजिस्ट, फोटोग्राफर, मूवी मेकर अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरणीय सरोकारों को मजबूत करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को 11 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। कंजर्वेशन के अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, पेंटिंग प्रतियोगिता होगी तथा अग्रिम पंक्ति में तैनात वन कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून की पहली बारिश हुई। राजधानी जयपुर में करीब 1 घंटे तक तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, लूणकरणसर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ और जोधपुर सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में आगामी 4-5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आज से जुलाई के पहले सप्ताह तक पश्चिमी तथा पूर्वी राजस्थान में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति

0: पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की पहली बारिश हुई। अगले 4 से 5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये जान लिया है कि अंततो गत्वा भरत ही राजा होंगे, किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ, पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। यदि तू मेरे ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूंगी। मंथरा अपने स्वामिनी को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों वरदान मांगकर वो अपनी छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, लेकिन ध्यान रखना, राजा से जो मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी मंथरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बना लूं। ऐसा कह मंथरा द्वारा प्रेरित हो वो कोप भवन में चली जाती हैं।

दोस्तों, अभी आप और हम मिलकर सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी नागौर के छिपी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:20 हुए हैं। प्रस्तुत है वंदना, भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 01582401168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे छोटे मजीद सोला, अनवर जानी, अजीज नाजा और अल्ताफ राजा की आवाजों में चंद भक्ति रचना है। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। इस समय सुबह के ठीक 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वरिष्ठ साहित्यकार एवं समाज सेवी श्री राम कुमार तिवारी से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
1: कम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री राम कुमार तिवारी, जो कि बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। गद्य में और पद्य में दोनों पर समान अधिकार है। गद्य भी लिखा है आपने, पद्य भी लिखा है, और इसके अलावा आप समाज सेवी के रूप में भी अपनी सेवाएं देते

0: हैं, वरिष्ठ जन हैं, और इस पूरे नागौर जिले में जो कि लाडनू हैं, उस लाडनू क्षेत्र में विशेष रूप से आप सक्रिय हैं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, और साहित्य सेवा जो आपने की है वो भी बहुत ही सराहनीय है। आज हम इन्हीं विषयों पर इनसे बात करेंगे। तिवारी साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: तिवारी साहब, अगर हम आपकी साहित्य यात्रा की बात शुरू करें तो थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप साहित्य की ओर प्रवृत्त हुए, कि हमें साहित्य लेखन चाहे गद्य हो पद्य हो, कब से आप लिख रहे हैं और लगभग अब तक आपने कितनी पुस्तकें गद्य पद्य जो भी है लिखी
1: हाँ,
0: है?
1: देखिए गोयल साहब, मेरा साहित्यिक जीवन है वो विद्यार्थी काल से शुरू हो गया था। मैं जब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था ना, तब भी भगवान की दया से मुझ में ये ऊर्जा थी कि
0: जी
1: कोई डिबेट होती तो मैं बहुत सुंदर बोलता। कॉलेज में और बीएड और बीएसटीसी मैंने की थी, वहाँ भी जहाँ
0: जी
1: भी डिबेट हुई बहुत सुंदर बोलता था। और आज भी मैं उद्बोधन देता हूँ, बौद्धिक देता हूँ, विद्यार्थियों के लिए देता हूँ, और गांव में जो सत्संग वगैरह होती है, मेरा गीता है वो मेरा एक प्रिय ग्रंथ है और मैं स्वाध्यायी हूँ। तो सबसे पहले 1964 में मेरी एक कहानी खून का रिश्ता, जोधपुर से एक साप्ताहिक पत्र निकलता था जनगण,
0: जी
1: उसमें मेरी पहली कहानी खून का रिश्ता प्रकाशित हुई थी और बहुत चर्चा हुई। लोगों ने विश्वास ही नहीं किया था कि भाई ये 17-18 साल के तिवारी जी इतना बढ़िया लिखते हैं।
0: जी
1: उसके बाद में क्या है कि आध्यात्मिक जीवन से कुछ ज़्यादा जुड़ा हुआ था। आपने देखा भी होगा नागौर जिले में अपने यहाँ जायल तहसील में एक माता जी दधिमती माता जी का मंदिर है,
0: जी
1: बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है
0: जी
1: भाई, कहा जाता है वो 2000 साल पुराना मंदिर है, शक्तिपीठ है।
0: जी
1: तो वहाँ से मैं जुड़ा हुआ था, हमारी कुलदेव भी है। तो सबसे पहली मेरी प्रकाशित पुस्तक है ना 1998 में दधिमती माता जी नाम
0: अच्छा
1: शीर्षक से प्रकाशित
0: अच्छा
1: हुई थी, और उसमें माता जी का पूरा विवरण है, प्राचीनता वगैरह,
0: जी उसका जो इतिहास है।
1: हाँ इतिहास है।
0: जी
1: और उसके साथ एक मेरे गांव में रंगनाथ भगवान का मंदिर है, तो उसे दिव्य देश की उपाधि है। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, बाकी दिव्य देश के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि क्या होता है कि कांचीपीठ में एक पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति है। वो मूर्ति अगर किसी जगह प्रतिष्ठा पर आती है, हमारे गांव में रघुनाथ भगवान का मंदिर बना तो वो मूर्ति वहां से प्रतिष्ठा के लिए आई थी। वो जमाना था 150 साल पहले का,
0: जी
1: बैलगाड़ियों से घोड़ों से और से मार्ग में उस
0: जी
1: मूर्ति की पूजा होती थी, सब कुछ होता था। तो वो मूर्ति उस प्रतिष्ठा के समय उनके सानिध्य में प्रतिष्ठा हुई थी,
0: जी
1: तो इसलिए हमारे श्री संप्रदाय में इस रोल को दिव्य देश ये संज्ञा दी हुई
0: जो
1: है।
0: रोल ये गांव है या नागौर में, वहीं के आप निवासी
1: हाँ वहीं का,
0: हैं मुख्यतः?
1: हाँ मुख्यतः मूल
0: जी
1: निवासी में रोल का ही हूँ। तो वो दिव्य देश की उपाधि मिली थी, तो
0: जी
1: वहाँ 100 साल बाद कोई संप्रोक्षण प्रतिष्ठा हुई थी।
0: जी
1: तो उस मंदिर से संबंध मैंने 3 स्मारिकाओं का संपादन किया था,
0: जी
1: जिसमें अपने पूरी भौगोलिक स्थिति, जोधपुर नागौर से क्या रोल का संबंध है, रोल क्या था, कहाँ से हुआ, काफी तो ये हुआ।
0: जी तो आप जो साहित्य की बात हम करें, आपने साहित्य सृजन शुरू किया, लगभग कितनी पुस्तकें आपने अब तक लिखी हैं?
1: देखो मेरी आपके गद्य में सबसे पहली पुस्तक थी यशस्वी बनकर जियो,
0: जी
1: और उस पुस्तक को बड़ी प्रतिष्ठा मिली। छत्तीसगढ़ सरकार ने उस पुस्तक की 2000 प्रतियां खरीदी थी, उन्होंने 5-10 ये मोटिवेशन की जो होती है ना, प्रेरणादायक पुस्तकें, तो उन्होंने प्रकाशक से कई पुस्तकें मंगाई और मेरी पुस्तक का साइन हुआ था। तो वो मेरी मोटिवेशन हिसाब से वो पुस्तक थी। और उसके बाद एक पुस्तक भी अभी निकली थी आपके, सफलता और सिद्धि आपका लक्ष्य, और इसी प्रकार एक अभी निकल छप गई वो भी नया सूरज। तो ये तीनों वॉल्यूम में जिसमें 50-55 लेख हैं, तो सारे के सारे लेख युवाओं को वृद्धों मतलब हाउ टू लिव जीने की कला आप कह सकते हैं, तो उसमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला था।
0: जी
1: फिर मैं आपको जैसे पहले कह चुका हूँ कि भाई संतों से और अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे आसपास के 4 संत जिनकी जीवनियां मैंने लिखी।
0: अच्छा।
1: और एक विशेष उल्लेख करूंगा, शायद आप नागौर में रह रहे हैं, आप नागौर एडिशनल डायरेक्टर हैं आकाशवाणी के, तो जरूर आपने नाम सुना होगा, एक सुदर्शन जी शर्मा थे जिन्होंने पूरा जीवन नागौर कांकरिया में सेवा दी थी उन्होंने, बहुत बड़े उच्च कोटि के थे वो, कोई सीमा नहीं उनका था, जीवन त्याग बस, इट इज गिव देन टेक, देना है सब कुछ, लेना कुछ नहीं है। बड़ा

0: विचित्र जीवन था, तो उनके जीवन पर मैंने दो पुस्तकें लिखी, एक तो एक विलक्षण संत का जीवन संगीत और एक अलौकिक महात्मा श्री सुदर्शन जी। फिर लाडनू गया एक दूजार आश्रम है, वहाँ मेरे गुरुदेव हुए थे पूर्णानंद जी महाराज, उनकी जीवनी लिखी। चालासर के पास एक स्थान है गाड़ोदा, वहाँ पर एक बाल जती करके महान संत हुए थे, तो उन पर जीवनी लिखी। एक आपने नाम सुना नागौर के पास भद्वासी करके एक गांव है, भद्वासी, तो वहाँ एक संत हुए थे, सताई हुए थे, मूर्ति राम जी महाराज, उनके जीवन पर भी एक लिखी। तो पांच तो मैंने संतों की जीवनियां लिख दी, मेरे खुद के ये तीन आपके ये हो गए गद्य पे, और पद्य में मेरे है एक तो मणि पुष्पक जिसमें कविता संग्रह है मेरा, और अभी एक लिखा मैंने सावधान वनमाली, वो भी पद्य में है सावधान वनमाली। तो मैंने उसका सावधान वनमाली इसलिए ना वो शीर्षक दे दिया, उसमें एक मुक्तक है कि सावधान वनमाली एक तरह पी क्या सींचे, जरा उनको भी संभाल जो रह गए हैं पीछे। उसमें इसी प्रकार के हैं कि बैठे हैं विश्वास जमाए कभी कोई पीठ थपथपाएगा, बैठे हैं विश्वास जमाए कभी कोई पीठ थपथपाएगा, वो खेवटिया है भव सागर का नाव खाली लेकर थोड़ी जाएगा, वो खेवटिया है भव सागर का नाव खाली लेकर थोड़ी जाएगा। इसी प्रकार इस नश्वर संसार को लेकर के या हर चीज बह रही है, हर चीज का क्षरण हो रहा है, हर चीज मतलब आप हम हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है ना और रिकॉर्डिंग होगी ना तब तक हम कुछ न कुछ घट चुके होंगे,
1: बिल्कुल प्रतिक्षण
0: प्रतिक्षण जा रहा है, तो
1: वो हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे,
0: कीमत नहीं समझ रहे हैं। तो उससे आपके संबंधित एक मेरा मुक्तक है कि यहाँ केवल पानी नहीं बह रहा, यहाँ केवल पानी नहीं बह रहा, हर वस्तु बह रही है, हर वस्तु बह रही है, कुतुब मीनार हो या चीन की दीवार बनी उसी दिन से डह रही है।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: बनी उसी दिन से,
1: बिल्कुल जिस दिन बनी उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू होगी,
0: उल्टी गिनती शुरू।
1: ये जो संसार नाशवान है, नाश होना है तो जिस दिन से वो पैदा हुआ उस दिन से वो बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, बढ़ इसलिए रहा है कि बड़ा हो रहा है लेकिन घट इसलिए
0: नई चीजें बढ़ रही है, बाकी जो जिस दिन बढ़ी ना
1: बहुत ही गहरी बात है,
0: उस दिन से घट रही है। जी, जैसे आप देखिए कि न पथ बदला न वाहन बदला, न पथ बदला न वाहन बदला यात्री सारे बदल गए, न पथ बदला न वाहन बदला यात्री सारे बदल गए, दिखने को तो पेड़ वही दिखता है पर पत्ते सारे बदल गए।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: दिखने को तो पेड़ वही दिखता है पर पत्ते सारे बदल गए।
1: जी जी, बहुत बढ़िया।
0: इसके अलावा एक मेरी पुस्तक सबसे ज्यादा चर्चित पुस्तक है वो है देव दर्शन।
1: जी,
0: भगवान की दया से आप भारतवर्ष के प्राय प्राय सभी तीर्थों में मेरा जाना हुआ, हम दो दो पत्नी और मैं दो दो खूब घूमे थे सब जगह, तो एक पुस्तक लिखी थी देव दर्शन, और उस पुस्तक पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राहुल सांस्कृतिक पुरस्कार 2012 में मिला था, यानी वो 150 पृष्ठ की जो पुस्तक है देव दर्शन, उसको अगर आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो आप बीच में नहीं छोड़ पाओगे। अच्छा। आपको ऐसा लगेगा बस मैं बिल्कुल जुट गया हूँ, मैं यात्रा कर रहा हूँ, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा सागर हो, और एक स्थान है आपके देखो नवदीप, कलकत्ता से आगे नवदीप है। अच्छा। वहाँ तो बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं, बिल्कुल टापू है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो भगवान ने मुझे वहाँ जाने का भी मौका दिया, तो वो आपके इनकी चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है।
1: अच्छा।
0: चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है, तो हम पति पत्नी वहाँ भी गए थे, और बड़ा वो, देखो मेरा एक विश्वास है कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा होता है। प्रकृति किरे माणानी सर्विषय गुण विभागसु अहंकार इमुडात्मा करता हम मन्यते, प्रकृति ने सब कुछ कर रखा है, अहंकारी लोग मूड लोग अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। तो मुझे भगवान ने श्रेय भी दिया, प्रेम भी दिया, मेरे 17 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं।
1: अच्छा।
0: अब तक 17 पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हो चुकी है, और ईश्वर की दया से बाकी मेरा मानना जो मेरा, अगर आप पूछना चाहेंगे कि मेरी फिलोसॉफी क्या है, मेरा दर्शन क्या है, मेरा चिंतन क्या है, तो मैं थोड़े में यही कहना चाहूंगा कि हम अपने आप को समझ नहीं रहे हैं। भगवान ने जो आपको कला दी है ना उसका आप 1-2% भी काम में नहीं ले रहे हैं, और इसका कारण यह है कि हम केवल संसार में फंसे हुए हैं, मतलब पास का लाभ और हानि देखते हैं, केवल पास की लाभ और हानि देखते हैं, जबकि हर व्यक्ति में अनंत संभावनाएं हैं।
1: बिल्कुल,
0: मुझे

0: स्वामी रामतीर्थ का एक वाक्य बहुत प्यारा लगता है। उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति का किसी स्थान पर पहुंचने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। अगर एक आदमी आसमान में उड़ता है तो दूसरा भी उड़ सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर एक आदमी प्रेसिडेंट बनता है इंडिया का तो दूसरा भी बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्या है, अपन बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिफल कहते हैं ना, तुच्छ बातों में उलझ जाते हैं। तुच्छ बातों में उलझ जाते हैं
1: और जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है उसको हम भूल जाते हैं।
0: याद ही नहीं आता कभी याद ही नहीं आता है।
1: जी, जी।
0: किसी आदमी ने आपको नमस्ते कर लिया तो खुश, नहीं किया तो नाराज।
1: जी बिल्कुल।
0: अब इतनी छोटी छोटी बातों में आप जब उलझ जाओगे तो मानव जीवन तो
1: बिल्कुल
0: बहुत बड़ी बहुत बड़ी ऊंची चीज है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अरे जी,
1: बहुत ही संकीर्ण दायरे में मतलब हम जी रहे हैं,
0: जी रहे हैं।
1: जबकि जो दायरा है हमारा वो सोच का दायरा विस्तृत होगा यदि, तो हमारा दायरा अपने आप बढ़ेगा। और कुछ आप क्षणिकाएं भी लिखते हैं, आपने कुछ अच्छी अच्छी क्षणिकाएं जो रोचक भी हों और जो कि मतलब लोगों को अच्छी भी लगे, और कुछ दो चार लाइन में जो अर्थ समझ में आ जाता है और गुदगुदाता भी है और उनको लोगों को मतलब सिखाता भी है, समझाता भी है, तो वो कुछ मुक्तक भी, कुछ वो जो क्षणिकाएं हैं वो भी हम आपसे चाहेंगे कि कुछ आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं ताकि कुछ उनको भी लाभ इससे मिले और जो एक उसके मर्म छिपा है उस बात के अंदर वो समझें उसको।
0: बिल्कुल। मैं मारवाड़ में भी राजस्थान में भी लिखता हूँ
1: जी।
0: तो पहले तो मेरे जन्म राजस्थान को लेकर दो लाइन चार लाइन बताऊँ आपको कि यहाँ क्या हुआ है। पूंजीगत बाजार है ना, औद्योगिक मार्केट, तो वहाँ क्या है कि लाख को कहते हैं पेटी, लाख को कहते हैं पेटी और करोड़ को कहते हैं खोखा। तो करोड़ों कहते हैं खोखा। तो चार लाइनें आप प्रस्तुत कर रहा हूँ कि लोग खोखा की खातर पचपच मरे, लोग खोखा की खातर पचपच मरे, अट खेत खेत में खोखा है, अट खेत खेत में खोखा है, राजस्थान नु ऊंची कोई धरती हुए सपा झूठा धोखा है।
1: क्या बात,
0: सपा झूठा
1: धोखा है, बहुत बढ़िया।
0: इसी प्रकार एक कहावत है
1: जी,
0: ऊंट चढ़ाने कुत्तो खावे। राजस्थानी भाई तो सब समझ जाएंगे, यानी बिल्कुल शेप है तो भी दुर्घटना हो गई, ऊंट चढ़ाने कुत्तो खावे। तो क्या, हमारे गांव में एक चौधरी नई नई मोटरसाइकिल लाया था और वो खेत से आ रहा था गांव की तरफ, बीच में कोई व्यक्ति मिला, उसने कहा राम राम चौधरी, राम राम राम राम, तो वो ध्यान चूक गया और नीचे गिर पड़ा।
1: अच्छा,
0: मोटरसाइकिल नीचे गिर पड़ा। तो गिरते ही वो तो मोटरसाइकिल को देखा ही नहीं और उस व्यक्ति के पीछे भगा कि इसको मारूंगा, इसको मारूंगा। तो लोग पूछे हुयो काई, कि हुयो काई, होली नहीं दिवाली नहीं, वो मारो रामा सामा कर्या कहेंगा। होली नहीं दिवाली नहीं, वो रामा सामा कर्या कहेंगा। तो उस घटना को लेकर चार लाइन उद्धत हो गई कि फटफटिया हूँ अपन आप पड़िया, फटफटिया हूँ अपन आप पड़िया, सामला ने धमकावे, इन्हें कहवे ऊंट चढ़ाने कुत्तो खावे।
1: क्या,
0: इन्हें कहवे ऊंट चढ़ाने
1: कुत्तो खावे। बिल्कुल।
0: देखो बिल्कुल छोटी सी क्षणिका देखिए, के सुई सुई डोरा में करी खारी, सुई डोरा में करी खारी, बिन फसार आप निकल गई, कपड़ा सिलाई होता है ना, सुई डोरा में करी खारी, बिन फसार आप निकल गई, आ कहीं होशियारी।
1: सही बात है, बिल्कुल।
0: कुंची तू हद कर गई, कुंची तू हद कर गई, एक आंटा में ताला को मुंडो बंद कर गई।
1: बिल्कुल सही बात है, जो हम कहते मुंह पर ताला लगाना और वो चाबी जो है वो ताले का
0: एक
1: उसमें,
0: बिल्कुल भी बंद कर गई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों के स्वभाव और उसको लेकर भी आपने कुछ क्षणिकाएं लिखी हैं जो आप जिक्र भी कर रहे थे अभी, कि किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं और वो किस प्रकार से उनका बिहेव होता है, दुष्ट और सज्जन जो हैं उनकी प्रकृति को लेकर भी कुछ क्षणिकाएं आपने लिखी
0: है। कुछ चार जी, कि कुछ लोगों का दूसरों को दुख देने का होता है स्वभाव, कुछ लोगों का दूसरों को दुख देने का होता है स्वभाव, चोंच भी वही मारते हैं जहाँ पहले से यह घाव,
1: चोंच भी वही मारते हैं जहाँ पहले से हो घाव,
0: पहले से यह घाव,
1: यानी कि वो अपनी बदमाशी में कोई कमी नहीं रखते।
0: हाँ, अगला तो वैसे ही दुखी है, चोंच वहाँ मारी है जहाँ पहले ही घाव
1: है,
0: वहाँ पर उसने और चोंच,
1: ये है वो दुष्ट स्वभाव के लोग।
0: और गरीबों पर देखो, एक के पास अरब है, एक के पास अरब है, एक अरब लिख नहीं पाता, एक के पास अरब है, एक अरब लिख नहीं पाता, पता नहीं दुनिया का सारा धन एक ओर ही क्यों जाता।

0: जो कि एक रचनाकार की दृष्टि से, एक साहित्यकार की दृष्टि से आपने उसको बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और उन चीज़ों को अगर हम केवल मनोरंजन और साहित्य की दृष्टि से नहीं, अगर उनको जीवन में उतारें, उससे कुछ सीख लें, तो जो रचनाकार साहित्यकार लिख रहे हैं वो इस समाज को देखकर ही, यहाँ की दशा को, दिशा को देखकर ही लिख रहे हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो
1: ये बात
0: वो कहीं से काल्पनिक बातें नहीं है। तो अगर उन चीजों को, और जो आपने लिखा है वो तो बिल्कुल ही यथार्थ है, यथार्थ का चित्रण आप करते हैं, तो हमें ये बहुत जरूरी है कि जो साहित्यकार हैं हमारे, वो समाज के मार्गदर्शक भी हैं। साहित्य रचना जो कर रहे हैं समाज के मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। तो साथ में आप साहित्यकार के साथ में आप मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक हैं, लेकिन आप सामाजिक क्षेत्र में भी काफी सक्रिय हैं। तो थोड़े से उस पर भी चर्चा हम करेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार से आप अपना योगदान मानते हैं, कि क्या आपने किया है, क्या करने की इच्छा है, और किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति एक समाज के अंग के रूप में अपना योगदान समाज को आगे बढ़ाने के लिए दे सकता है।
1: शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ,
0: जी
1: पूरा जीवन शिक्षक के रूप में बीता है। तो मेरा मुख्य जो है ना, झुकाव के दो, लगाव के दो, लक्ष्य के दो, मैं विद्यार्थियों के प्रति बहुत
0: जी
1: झुका हुआ हूँ। मुझे कोई भी विद्यार्थी हो वो मुझे मेरे पुत्र बहुत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। मुझे कहीं भी मालूम पड़ जाए कि वो विद्यार्थी कुछ तकलीफ में है, तो मैं उसका सहयोग करने का पूरा
0: प्रयास
1: पूरा
0: करते हैं।
1: प्रयास करता हूँ।
0: जी
1: विद्यालय में जाता हूँ, बच्चों को प्रेरक घटनाएं सुनाता हूँ, दृष्टांत देता हूँ कि भाई अपने जीवन को ऊंचा उठाओ, छोटी छोटी बातों से दूर रहो। और हमारे समाज में एक पत्रिका निकलती है दधिमति करके, तो उसका मैं वर्षों तक संपादक रहा हूँ, आज भी हूँ। तो उस संपादन में भी मैंने, ठीक है समाज की आपके सूचनाएं हैं और है, उत्सव वगैरह के होते हैं, लेकिन मेरा जो संपादकीय होता था और जो मुझे लिखना होता था वो केवल मैं प्रेरक उद्बोधन, प्रेरक लेख लिखा करता था,
0: जी जी
1: ताकि हर एक को
0: इससे
1: प्रेरणा मिले।
0: बिल्कुल
1: और अगर आपको समय होते, छोटी सी बात मैं आपको और कह सकता हूँ,
0: जी
1: है ये घड़ी का नीचे वो क्या कहते
0: जी
1: हैं,
0: पेंडुलम
1: पेंडुलम होता है
0: जी
1: ना, तो जब वो मिस्त्री ने या कारीगर ने, उत्पादनकर्ता ने जब घड़ी बनाई, तो उस पेंडुलम ने कहा कि मुझे क्या करना होगा, मेरा काम क्या है। तो उसने कहा भी तुझे हर सेकंड में एक बार हिलना होगा, हर सेकंड में एक बार हिलना होगा। तो घबराया कि हर सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार, 1 घंटे में 36, 4000 बार, और 24 घंटे में कितना होगा, ये काम तो बड़ा विकट है। तो घड़ी साहब ने कहा, बनाने वाले ने, कि बेटा तू इसकी चिंता मत कर, तेरा काम तो इतना ही है, एक बार हिलना है बस, ये काउंटिंग मत कर। तू काउंटिंग करेगा तो तू अभी मर जाएगा, भैंसे चला जाएगा, तो काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बच्चों को कहता हूँ भाई, जीवन को आगे ये होगा, ये होगा, ये
0: जी
1: होगा, ऐसी काउंटिंग मत करो।
0: बस निरंतर प्रयास
1: हाँ,
0: करते रहो।
1: आज हो आप तो आज, वो कहते हैं ना, कल कौन इतना साहूकार है कि आज की बंदूक उसके कंधे पर रख दूं, है कल कौन सा इतना साहूकार है कि आज की भरी बंदूक उसके कंधे पर रख दूं। कल
0: जी
1: की मत सोचो, आज जहां हो, जिस जगह हो। स्वामी रामतीर्थ का एक छोटा सा वाक्य बड़ा पसंद है कि अगर आपको आपके पैरों के नीचे की धरती स्वर्ग से बढ़कर नहीं लगती है, तो अच्छा है कि आप अपने आप को गोली मार लो। जहां हो प्राप्त का आदर,
0: उस पर गर्व करो, उसका
1: महत्व
0: सम्मान करो और उसका महत्व समझो। जो
1: समझो,
0: प्राप्य है उसका लाभ उठाएं, और जो अप्राप्य है उसको प्राप्त करने की कोशिश करें, लेकिन उसके पीछे भागे नहीं,
1: भागे नहीं,
0: वो चिंता नहीं करें।
1: और अगर आप सही हो तो अपने आप प्राप्त होगा।
0: जी बिल्कुल
1: अगर
0: बिल्कुल,
1: आप सही हो
0: आप
1: ना,
0: पात्र हैं तो बिल्कुल मिलेगा
1: बिल्कुल होगा। जैसे आप उदाहरण के
0: बिल्कुल
1: सोचो, अगर कोई एक मिस्त्री है, बढ़िया
0: जी
1: मिस्त्री है, और वो शहर से 5 किलोमीटर दूर है,
0: बिल्कुल
1: उसका कारखाना, उसका वर्कशॉप 5 किलोमीटर शहर से दूर है, लेकिन लोग पूछ करवा जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: अगर आपके पास कुछ है, दुनिया अपने आप आपके पास
0: पूछे,
1: आएगी,
0: बिल्कुल
1: पूछना पड़ेगा दुनिया को,
0: जी जी
1: है?
0: तो तिवारी साहब, बहुत ही प्रेरक बातें आपसे हुई हैं, बहुत ही साहित्य से लेकर और जीवन दर्शन तक जो आपकी सारी चीजें बहुत ही प्रेरक हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये सारी बातें बहुत अच्छी भी लगी होंगी।
2: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार एवं समाजसेवी श्री राम कुमार तिवारी से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम।

गाने पुराने जमाने के। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म परवरिश के इस गीत से। इस गीत को आवाज दिया आशा भोसले और उनका साथ दे रही है आरती मुखर्जी।

दोस्तों, ये गीत इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म परवर से। इस गीत को आवाज़ दी है आरती मुखर्जी, आशा भोंसले, शैलेंद्र सिंह और इन सबका साथ दे रहे हैं अमित कुमार।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है? क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: मुझे भी कुछ कहना है,
7: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
7: पहले तुम,
6: पहले तुम,
7: पहले तुम,
6: पहले तुम,
7: पहले तुम,
6: तुम,
7: तुम,
6: तुम,
7: तुम,
6: तुम,
7: तुम,
6: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
7: अच्छा मैं कहती हूँ

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: दोस्तों, ब्रेक से पहले जो गीत आप सुन रहे थे उसको हमने लिया था बॉबी फिल्म से। उस गीत को आवाज दी थी लता मंगेशकर और उनका साथ दे रहे थे शैलेंद्र सिंह। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म बॉम्बे टू गोवा से। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने।

0: करुमान।
1: दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म लैला मजनू से। इस गीत को आवाज़ दिया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

दोस्तों आकाशवाणी नागौर के चिरमिर चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म ललकार से। आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

चलिए दोस्तों, कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म लाट साहब से। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोंसले ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के 6 में चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz पर तो आप हमें सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ सोनी IR और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में कहीं पर भी ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए। इनके अतिरिक्त भी आप हमें प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने ने तराने ने। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म तमाशा के इस गीत से। इस गीत को आवाज दी है मिका सिंह और उनका साथ दे रहे हैं नकास अजीज।

0: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
1: प्रेम रतन धन पायो, यह है कार्यक्रम की अगली फिल्म का नाम। इस गीत को आवाज दी है शान, ऐश्वर्या मजुमदार और पलक मुचाल ने।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल और कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं गाने नए तराने ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म ए दिल है मुश्किल। इस गीत को आवाज दी है प्रीतम और अरिजीत सिंह ने।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल और कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं गाने नए तराने नए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म MS धोनी से। इस गीत को आवाज दी है पलक मुच्छाला ने।

दोस्तों, ये फिल्मी गाने इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से, और कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं गाने ने तराने ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी से। इस गीत को आवाज दी है जैस्मीन बाला ने।

0: दोस्तों, धड़क फिल्म के इस गीत के साथ ही गाने नए तराने नए ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिमनी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। तो आप हमें सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ओन AIR और इंटरनेट के जरिए ऑल इंडिया रेडियो लाइव के माध्यम से। इस समय दिन के ठीक 11 बजे हैं। प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित होगा।
1: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज कुछ ऐसे गाने जिनमें हैं बारिश के छींटे। लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत, सुमित्रा कुमारी सिन्हा के बोल हैं।

0: चंद्रदास की आवाज में ये निदा फाजली का कलाम था। विविध भारती पर रंग तरंग।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ नहीं दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग। हमें खेद है कि आखिरी गाना आप ठीक से नहीं सुन पाए। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए।

0: अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: क्या आप बार बार होने वाली छींकों और बंद नाक की समस्या को लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं? बिना इलाज के एलर्जी आगे चलकर ज्यादा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र बेड़ा, चेस्ट फिजिशियन नागौर से बोल रहा हूँ। एलर्जी सिर्फ छींक आने तक सीमित नहीं होती, अगर इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो यह अस्थमा, साइनस की समस्या, नाक के संक्रमण या सांस लेने में तकलीफ का कारण बन सकती है। इसे डॉक्टर एलर्जी मास्क कहते हैं। इसलिए एलर्जी का समय पर इलाज करना बेहद जरूरी है। धूल और धुएं जैसे ट्रिगर से बचें, डॉक्टर की सलाह लें, को नजरअंदाज न करें। स्वस्थ सांस लेना सही देखभाल से शुरू होता है। कल सही इलाज करें और आराम से सांस लें।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।

तेरा ना मेरा कुछ, तेरा ना मेरा मुसाफिर।

शैलेंद्र के बोल थे एसडी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम गाइड। यादों की महफिल विविध भारती से। अगला गाना आनंद बख्शी की आवाज में, उन्हीं की रचना है, फिल्म का नाम बालिका वधू।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। अशोक भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजें, गुलशन बावरा, राहुल देव बर्मन, सत्ते पे सत्ता।

आनंद बख्शी के बोल थे रेशमा की आवाज, फिल्म का नाम था हीरो। अमिताभ बच्चन की आवाज शिवहरी की तर्ज है, फिल्म का नाम सिलसिला।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से अनुप्रसारित किया जा रहा था। हम आपको बता दें कि ये प्रसारण आप पुनः सुन पाएंगे दिन में 1:05 से। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ सोनी IR और इंटरनेट के जरिए ऑल इंडिया रेडियो लाइव के माध्यम से सुन सकते हैं। इसके अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुन सकते हैं। इस समय दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। आज देश राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन कर रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि साहित्य के एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ के रूप में उनकी रचनाओं ने भारतीयों की कई पीढ़ियों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना जगाई है। उनका समृद्ध साहित्यिक योगदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करता है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा है कि उनकी अमर रचनाएं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विचार युगों युगों तक देशवासियों को राष्ट्र सेवा और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते रहेंगे। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम आज पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में जुलूसों के साथ मातम मनाया जा रहा है और मजलिसें आयोजित की जा रही हैं। राजधानी जयपुर में आकर्षक सजावट के साथ छोटे बड़े ताजियों के साथ बड़ी संख्या में मोमिन मातमी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन भर निकलने वाले ये जुलूस और ताजिए रात में करबला में सुपुर्द खाक किए जाएंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में विशेष धार्मिक रस्में अदा की जा रही हैं। यहां दुआ, फातिहा और नियाज का आयोजन हो रहा है। जालौर में मेहंदी की रस्म अदा कर ताजिए मुहर्रम पोल से शुरू होकर विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए बड़ी पोल पहुंचे हैं। यहां से इन्हें करबला के मैदान में ले जाया जा रहा है। कई स्थानों पर छबीलें लगाई गई हैं। सभी जिलों में जुलूस को लेकर स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान त्याग, साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। आज अंतर्राष्ट्रीय

0: नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की गई है। ये क्विज देश भर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। पाली में नगर निगम की ओर से बैनर और पोस्टर के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ, सुरक्षित तथा खुशहाल समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय आशा, स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आम जन से नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेने की अपील की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। इस दिन खुराक से वंचित रहे बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से। इस समय दिन का 1:05 हुआ है। चलिए वापस चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की तरफ। आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

ये सुदास के साथ हेमांती शुक्ला की आवाज बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और ये खुशी की बात है क्योंकि कम चर्चित गायिका को अगर आपने पहचान लिया इसका मतलब आप फिल्म संगीत के सही कदरदान हैं। पहला ही गीत बहुत खूबसूरत है, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने ये रिपोर्ट की है कि यहां सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश का इंतजार है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब है कि आपका गाना क्या है, कहां से छाए बदरा, हमें मालूम है समुद्र से आए बदरा। एक और श्रोता है जो कहते हैं, कविता में कहती हैं, बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं हमारे शहर के आसमान में, जाने कब एक होकर बरसें, जाने कब प्यास बुझे सूखे अरमान की। भाई कविता करने की इन्होंने कोशिश की। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि ये गाना बजेगा, ये मेरा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं, सफेद बादल छाए हैं बिना पानी वाले, जाने कब होगी बरसात। एक और श्रोता है जिन्होंने कविता लिख भेजी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की ये कविता, मजा आ गया आपने कविता लिखी। फिलीपींस से एक श्रोता का मैसेज ये है कि मौसम खुशगवार है, सूरज देवता आंख मिचौली खेल रहे हैं और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। एक और श्रोता अपने खेत पर बुवाई करते हुए सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां बादल शादी में मुंह फुलाए फूफा की तरह घूम रहे हैं, नजर तो आएंगे पर किसी काम के नहीं है। क्या बात है भाई, आपकी इस बात और इसकी इस बात में जो व्यंग्य था उसमें बड़ा मजा आ गया है। एक और श्रोता है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तापमान 30 डिग्री, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हैं। देखिए भाई, देश भर के मौसम का जो हाल है वो यहां पता चल जा रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश 2-3 दिन बाद हो जाती है, लेकिन अब 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि घटा छाई है, किसी भी मिनट बरस सकते हैं बादल। तो ये हैं हमारे तमाम श्रोता जो अलग अलग शहरों से अपने शहर के मौसम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि उनकी तमन्ना किस गाने को सुनने की है और उनका गाना और हमारा गाना मैच हो रहा है या नहीं। ये तमाम बातें यहां चल रही हैं और उसके अलावा एक और चीज चल रही है, वो है तेज हवा।

युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में गुमराह फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। और पतंगबाजी को लेकर कितने सारे कमेंट्स आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़का अक्सर पतंग पर एक प्रेम पत्र लिखकर अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता था। वो अद्भुत दृश्य होता था। 90 के दशक में प्रेम पत्र का बड़ा क्रेज था। ये कमेंट। और इसके अलावा ये कमेंट कि हमारे गुजरात में पतंग मशहूर खंबात के बरोड़ा के जहां बनता है, हमारे गांव में दिवाली के बाद पतंग उड़ाने की शुरुआत हो जाती है, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि करीब 50 साल बाद इस संक्रांति में मेरे मुझसे 2 साल बड़ा भाई, जो बचपन में बहुत पतंग उड़ाते थे, हम दोनों ने पतंग उड़ाई, मांझा सूता और करीब 3 पतंग काटी, मजा आ गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पतंग से सिर्फ ये याद आता है कि रफी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हमको उड़ानी तो नहीं आती है, पर अपने भाई की चकरी जरूर पकड़ कर रखते थे। रफी साहब को ही नहीं बल्कि मन्ना डे को भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पतंग बहुत बनाई लेकिन कभी किसी से पींच नहीं लड़ाया, बस ऐसे ही पतंग उड़ाने में मजा आता रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमीरगढ़ राजस्थान से हम लिख रहे हैं और कल ही तेज बारिश हुई है। उसके अलावा एक और श्रोता पतंग की बात पर लिखती हैं कि मेरे भाई कांच की बोतल को फोड़कर पीसकर महीन करके उससे मांझा सूतते थे और मैं पतंग तो उड़ा नहीं पाती थी लेकिन लटाई पकड़ने का काम मेरा होता था। भाई बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें जो छोटे होंगे और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, जाहिर है कि पतंग उड़ाने का काम जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को होता मिलता था और चक्री पकड़ने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ चक्री पकड़ने का काम मिला और आपने कई बार ये जोर दिया कि भाई मुझे भी तो दो, मुझे भी तो जरा पतंग उड़ाने दो। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज की इबारत पकड़कर मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं। मन को रंगीला करने वाली बारिश की कहानी बताना चाहूंगा कि शादी के अगले साल मैं और पत्नी बारिश के मौसम में अजमेर से लूनावाला खंडाला गए थे। किराए पर बाइसाइकिल ली और भीगते हुए दोनों घाटों तक चले गए। ना आसमां का पता था ना जमी का, बस खाइयों का नजारा था। अच्छा अच्छा, ना आसमां का पता हो ना जमी का, इस पंक्ति से उन्हें याद आ गई अपनी ये बात। एक और श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को हमारे यहां पतंगबाजी होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता वो लिखते हैं कि जयपुर में हमारे यहां कल बहुत बरसात हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश में कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब परीक्षाएं मई जून तक खिंच जाती थीं और समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करें या बारिश के मजे लें। इसके अलावा एक और श्रोता है वो लिख रही है कि क्या बोलें, ये बारिश की कहानी आपके लिए, बादल आ भी जाए तो डिलीवरी का पता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो बारिश के इंतजार में हैं। और कई श्रोताओं ने जिस तरह से पतंग की यादें बांटी हैं, हो सकता है कि कुछ और श्रोता अभी रह गए हों और उनके कमेंट्स आते ही होंगे, तो उनकी बातें भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तब तक जरा आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ, जो बहुत ही झूम झुमा दे

वाला गाना है। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, लता मंगेशकर की आवाज। इस गाने के गीतकार का नाम बताइएगा।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना गीतकार नीरज ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारा बेटा 1000 रुपए की पतंग लाता है संक्रांति में, दोस्तों के साथ खूब उड़ाया करता था। अब पोते छोटे हैं और वो थोड़े थोड़े मजे लेते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो सूरत गुजरात में हैं और वो भी इसी तरह पतंगबाजी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट हैं। सौराष्ट्र गुजरात के हमारे कुछ श्रोताओं के ये मैसेज हैं कि किसान वहां बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि बुवाई समय पर हो। अभी तक जमीन में बीज पड़ जाने चाहिए थे लेकिन देर हो चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शाम को बहुत पतंग उड़ाई है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये सही बात है कि छोटा भाई मैं था तो बड़े भाई साहब पतंग उड़ाते थे और मेरा काम था चकरी पकड़ना, पर मैंने ये महसूस किया कि चकरी पकड़ना भी एक कला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि ना तो मैंने चकरी पकड़ी ना पतंग उड़ाई, लेकिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखने में बड़ा मजा आता था और जब पतंग कटकर आती थी छत पर तो जल्दी से उठाकर अपने बड़े भाई को दे देती थी। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे गांव में यदा कदा कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं और खास त्योहारों पर उड़ाते हैं। बचपन की याद ये है कि 2 पैसे में 4 पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता लेकिन जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि पतंग से पींच लड़ाने में मजा तो बहुत आता था लेकिन कई बार यह होता था कि दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपनी ही पतंग उड़ जाती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे चक्री पकड़ा दी जाती थी जो इतनी तेजी से घूमती थी कि डर लगता था। तो ये पतंग की बातें बातों बातों में इतनी दूर तक चली आई कि अब हम चल रहे हैं आसमां के नीचे।

ये बताइए कि आज सुबह से आपके होंठों पर, आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है? आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है?

भाई ये गाना हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं हमने शामिल करने की लगातार कोशिश की, और अभी भी जब भी कोई गाना खत्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट इस बीच में आए हैं वो सभी शामिल कर लिए जाए। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हाँ आपके गाने और हमारे गाने मैच हो रहे हैं। एक श्रोता पता नहीं लपक झपक तू आर्य बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो गाने का जिक्र कर रहे हैं। ये उनके जहन में गूंज रहा है ये गाना लपक झपक तू आर्य बदरवा। इसके अलावा एक श्रोता के जहन में गूंज रहा है सिमटी सी शर्माई सी। एक और श्रोता हैं जिनके जहन में आज रपट जाए गूंज रहा है तो किसी के जहन में सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दी जा रही। देखिए किसने तरह के गाने हमारे अलग-अलग श्रोताओं के जहन में गूंज रहे हैं। एक श्रोता लिख रही हैं कि इतना समय ही कहां कि कोई गीत जहन में गूंजे, ऊपर से मौसम का मिजाज गर्म, हाय गर्मी उफ गर्मी यही उनकी जुबां पर है। चलिए भाई ठीक है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनकी जुबा पर सुबह से है नैनों में पतरा छाए, और इसके अलावा एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि अकोला में हम शाम को समय निकाल कर बहुत पतंग उड़ाया करते थे, और इसके अलावा कई और श्रोता हैं जो बारिश की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बारिश के इंतजार में हम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंग उड़ाने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका मांझे से हाथ ना कटा हो। अभी कुछ साल पहले एक हृदय विदारक घटना सुनी थी कि मांझे से किसी व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो गया था। उसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शादी के बाद हम पहली बार मूवी देखने गए, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और हम दोनों के मुंह से निकला रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। आज भी ये हम दोनों का पसंदीदा गाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ। आपके शहर में चाहे गर्मी हो, चाहे बादल छाए हो, चाहे आप गर्मी से हो हलाकान या परेशान,

कम से कम ये गाना तो हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि जब मौसम सुहाना होता है तो आपके होंठों पर कौन सी पंक्तियां आती हैं।

पतंग की बातें क्या हुई, बहुत सारे श्रोताओं की बचपन की यादें ताजा हो गई हैं, कई श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और वो सभी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं, बरखा रानी जरा जम के बरसों हमारे ग्वालियर में भी, इसका मतलब उनके शहर में भी बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अनवर को याद किया है, जिनकी आवाज में ये गाना था मौसम मौसम लवली मौसम। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है सचिन और पद्मिनी कोल्हापुरे की आवाजें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे जहन में गूंज रहा है गाना छतरी न खोल बरसात में। और इसके अलावा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना था, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा। एक श्रोता को ये कन्फ्यूजन हुआ कि ये त्रिशूल फिल्म का गाना है, जो कि गलत जवाब है। उसके अलावा एक श्रोता ये हैं जिनका कहना है कि इस तरह के गानों को सुनकर मौसम अपने आप ही लवली हो जाता है। गीतकार का नाम है गुलजार, संगीतकार का नाम है खयाम साहब। तो फिर आगे बढ़कर जरा देखें, एक श्रोताएं लिखते हैं कि हमने कोलकाता में भी पतंग उड़ाई थी, विक्टोरिया मैदान में पतंगबाजी देखी। जवानी में बहुत लंबे लंबे पींच लगाए हैं, पतंग बहुत छोटी सी नजर आती थी जब आसमान में ऊंचाई पर उड़ा करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दसवीं की बात है, बारिश का मौसम था, शाम का समय था, जब मैं कोचिंग जा रहा था, रोड के किनारे काफी गहरी नाली खोदी थी, उसमें पानी भर गया था, बरसात हो रही थी, तो सोचा थोड़ी सी चप्पल इस पानी में धो लेता हूं। लेकिन जब मैं उसमें डूब गया, मेरा रजिस्टर छतरी के ऊपर तान में रखा हुआ था और मैं पूरा भीग गया था, लेकिन मेरी छतरी और मेरा रजिस्टर बच गया।

इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मांझे पर हम चावल के आटे का घोल लगाते थे, मराठी में खड़ कहते हैं, इसमें कांच को कूट कर उसमें पाउडर मिलाते थे ताकि पतंग फटाफट काटी जाए। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख कहते हैं कि कहाँ गया ये कमेंट। एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती के सुबह से गाने सुने तो जो गाना सुबह सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंगबाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियां खाई जाती हैं, ये शायद संक्रांति को याद कर रहे हैं, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयां, ये सारी चीजें याद की हैं। और इसके अलावा जो बहुत नीचे के कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, तो उनमें कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने, अब जैसे ये श्रोता है, इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, खरीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्जे में कर लिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता है, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगें उड़ाई हैं और 15 फीट ऊंची छत से गिरकर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए। ओहो, खतरनाक बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 67 साल से ज्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चरखियां एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। आसपास कोई उड़ाता तो नहीं है, लेकिन मैं काफी ऊंची पतंग 1 घंटे तक उड़ाता हूं, ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। ओ भाई, ये श्रोताओं की बातें। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या यही कैफियत आपकी है जो इन साहिबा की है। बारिश का इंतजार है और तमाम बातें हो रही हैं, तो बारिश में की गई किसी रेल यात्रा की यादें हमारे साथ साझा कीजिए।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीग कर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है, और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था, मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताजा हो गई हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस फिल्म का है ये गाना?

सुंदर यादें बांटी हैं, कुछ बारिश वाले रेल के सफर की यादें हैं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने जमाने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 34वीं कड़ी।

बारिसाल जैसी घटनाएं बंगाल में बार बार घटने लगीं। वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेजों का विरोध करना आम लोगों की नजर में एक रोजमर्रा की बात बन गई। यह विरोध अब और अधिक संगठित रूप से होने लगा। बंगाल में ऐसी घटनाएं जगह जगह होने लगी। पुलिस का डर ही नहीं बचा। यह लहर मजदूर वर्ग में भी

0: 1906 में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के लिए भगिनी निवेदिता कार्यरत थीं। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्य भारती इस अधिवेशन में पत्रकार के रूप में उपस्थित थे। भगिनी निवेदिता के साथ हुई चर्चा के कारण सुब्रमण्य भारती के लेखन और विचारों को एक दिशा मिली। सुब्रमण्य भारती ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था।
1: हिंदुस्तान मतलब जंजीरों से जकड़ी हुई दुखी माँ है, ऐसा भगिनी निवेदिता कहा करती थी। सुब्रमण्यम भारती पर भगिनी निवेदिता के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा।

0: वंदे मातरम शब्दों का उपयोग करते हुए एक ओर उन्होंने भारत के वैभव, इतिहास, संस्कृति का गौरव किया तो दूसरी ओर जातिवाद जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा,
1: भले हो यहाँ हजारों जातियां, पर न हो विदेशियों को यहां स्थान। एक माता के पुत्र हम चाहे लड़ें जितने, हैं फिर भी एक दूसरे के बंधु ही।

0: सुन, यहां आ, यहां कोई ऊंच नीच नहीं है। सुब्रमण्य भारती की ये क्रांतिकारी कविता है। इसमें वो इंसान को पुकार कर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव गलत है।
1: भारत वंदना इस प्रसिद्ध कविता में सुब्रमण्यम भारती लिखते हैं,
2: हमारी भारतीय माताएं बचपन में विवाहित होकर अपना घर बसाती थीं। यहीं उन्हें एहसास होता था मातृत्व के आनंद का, संतान प्राप्ति के गर्व का। जगह जगह स्थापित हमारे मंदिरों ने बड़ों को आत्मा के सत्य की अनुभूति करा दी। काल प्रवाह में उनके विलीन होने पर उनकी संतानों ने वेदी की उनकी जगह ले ली। सत्य की उस स्मृति को मैं वंदन करता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: सुब्रमण्यम भारती ने तमिल भाषा में जो वंदे मातरम के दो अनुवाद किए वे इस प्रकार हैं।

तमिल के जैसे ही दक्षिण की तेलुगु भाषा में भी वंदे मातरम का अनुवाद हुआ। अनुवादक कवि थे लक्ष्मी नरसिंह पंतलु। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री में एक बड़ी सभा में बिपिन चंद्र पाल के सम्मुख वंदे मातरम तेलुगु भाषा में गाया गया। वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, मंद मंद मलयानिल जागृत निर्मल जीवन मधुर फला।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 34वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
3: कौन लाया, कौन लाया।
4: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
5: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
4: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
6: एक टुकड़ा धूप का।
4: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
4: For our business,
5: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
5: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। में 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
4: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में यह गोदान फिल्म का गाना था। अनजान की बोल थी, संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही

0: इनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहनी, दिल्ली से।
0: शीला जी, क्या हाल चाल है?
1: हाँ,
0: शीला जी
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी हमारे भी हाल चाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात बताइए,
1: मैम,
0: दिल्ली
1: काम
0: के क्या
1: करती।
0: हाल चाल हैं?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप ऊप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर
1: हाँ,
0: निकलते वक्त छाता
1: पानी
0: लेके
1: पी लो,
0: चलना।
1: ठंडा पी लो, जिसका होता है वो लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम, नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है
1: हाँ
0: आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, विविध
0: क्या बात है, शुक्रिया
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी जी
1: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
0: अच्छा जी, निशा जी, आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी। हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में हम
1: जी
0: सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
1: जी
0: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
1: जी
0: हुई हैं?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
0: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और तीन चार आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ। तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला, तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी।

0: बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
1: जी
0: के साथ
1: हाँ,
0: खुशहाल हैं।
1: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए, किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए, और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बागुल, सावन में लीजो बुलाए। जी
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, जी
0: पूनम जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं तो मतलब बस हाउस वाइफ है मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का
1: हाँ
0: ख्याल रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ जी
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में, और ये कला जो
1: हाँ
0: होती है ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अपने बारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप

0: सुनना चाहती हैं?
1: एक बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का, मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दी।
0: नमस्ते। कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी, मैं श्वेता भारती, जिला इंडिया, ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या
1: जी
0: हालचाल है आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो।
0: जी हम भी मजे में हैं और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि
1: तो
0: आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी, घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात
1: जी
0: है।
1: जी
0: और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने में?
1: मुझे मुझे गाने में आनंद मिलता है। और रेडियो सुनती हूँ, विविध
0: गाती भी है।
1: भारती बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत
0: विविध
1: खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी,
0: जी, और गाती भी हैं आप
1: जी दीदी गाती हूँ। अच्छा,
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: गुनगुना के भी सुनाओ। देवी
0: सुनाइए।
1: जी के मंदिर में लट से बाहरी आई, देवी जी के मंदिर में लट से

0: आंगी आई देवी जी के मंदिर में लट से आई।
1: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
0: जी।
1: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: फिर जीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी।
1: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: कोई भी सुना दीजिए।
1: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी कलाओं
1: जी
0: में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन

0: कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी हैं या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी, मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हम हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये
2: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
0: परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है, तो ये हर, अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सही जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
1: जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है, वो मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते
1: धन्यवाद
0: गुनगुनाते रहिए। और यही गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है, वहां पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या
1: और
0: बात है,
1: हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने
1: जी,
0: पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उन उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी,
0: आप क्या काम करती है वहां पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहां जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। प्रकाश बाबा आमटे

0: फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला, और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
1: तो कैसा लग रहा
0: और
1: है आपको वहां जाकर?
0: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है, और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है,
0: जी
1: क्योंकि जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
0: जी
1: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
0: जी
1: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
0: हाँ हाँ मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको भी वहां पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
0: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ, और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
1: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के, तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: हमको मन की शक्ति देना, यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है, और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
1: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी
1: जी
0: किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ। जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
1: मुझे
0: सुनना चाहती हैं?
1: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
0: तो ये गाना
1: जी
0: गुनगुना के बताइए आप।
1: जी

0: बारी दिल रुबा।
1: ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से। हाँ
0: हिसार, हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी, विविध
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती
1: थोड़ा
0: हैं, व्यायाम करती हैं?
1: बहुत बस घर के कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखे जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर अब तो निश्चिंत की जिंदगी, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीर भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी ही खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उसका कोर्स किया, और तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही।
1: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
1: हाँ
0: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
1: जी जी
0: बदौलत
1: जी
0: आप तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला
1: मुझे
0: को ऐसे ही करना चाहिए कि कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा, और जब
1: जी
0: हम
1: जी
0: योग
1: बिल्कुल
0: करते हैं ना तो हमारा देखा सीखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।

0: ना आपसे बातें करके। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज में।
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार है, 400-24662, फिर से 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारे सखियों के फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया कि कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सोने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहां लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था, उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हां, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

0: मन।
1: तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था। उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे। रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हां, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलभेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि यह तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्कसंगत हो, ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

झाला झाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की

खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे, कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहे, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहे।

लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे।

0: आगे बढ़ गए। कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी जी जी कुछ नहीं हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन FM में 103.7 MHz पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिल्मी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुति कार्यक्रम युवाणी।

मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नेहा नारायण सोनी, आज की आपकी होस्ट और दोस्त, और आप सुन रहे हैं युववाणी। यह वह मंच है जहां युवा सोच को मिलती है नई दिशा, सपनों को मिलती है नई उड़ान और विचारों को मिलता है नया आसमान। दोस्तों, आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर, जो कि हर वर्ष 26 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है, नशा मुक्त समाज में के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1987 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। आज नशाखोरी विश्व भर में एक गंभीर समस्या, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुकी है। शराब, तंबाकू, गुटखा, स्मैक, हेरोइन तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। नशे की लत से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है और परिवार में तनाव तथा आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती है। युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति विशेष चिंता का विषय है। कई बार मित्रों के दबाव, तनाव, बेरोजगारी, जिज्ञासा या गलत संगति के कारण युवा नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। धीरे धीरे यह आदत लत में बदल जाती है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित होता है। नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं दोस्तों, बल्कि उसके परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। इस विषय पर हमारी बात हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं ये गाना।

0: तीनों कॉलेज में
1: डोंट वरी
0: फीस तो देखो
2: क्या हाल है क्या हुआ
1: फीस की टेंशन
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
3: रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल
2: वो कहाँ है
3: मिठाई
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: दोस्तों इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। आज नशाखोरी विश्व भर में एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुकी है, जैसा कि आप ये सभी जानते ही हैं। तो शराब, तंबाकू, गुटखा, स्मैक, हीरोइन तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति विशेष चिंता का विषय है। कई बार मित्रों के दबाव, तनाव, बेरोजगारी, जिज्ञासा या गलत संगति के कारण युवा नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। धीरे धीरे ये आदत में बदल जाती है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित होता है। नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। नशे की रोकथाम के लिए जागरूकता सबसे प्रभावी उपाय है। दोस्तों, परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय और समाज को मिलकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। खेल, योग, सांस्कृतिक गतिविधियों और सकारात्मक जीवन शैली को अपनाकर नशे से दूर रहा जा सकता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान और पुनर्वास केंद्र भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हमें ये संदेश देता है कि स्वास्थ्य शरीर, सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त भारत और स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लें तथा अपने आसपास के लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, हम हमारी बातें जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

0: क्या आप बार बार होने वाली छींकों और बंद नाक की समस्या को लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं? बिना इलाज के एलर्जी आगे चलकर ज्यादा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र बेड़ा, चेस्ट फिजिशियन नागौर से बोल रहा हूँ। एलर्जी सिर्फ छींक आने तक सीमित नहीं होती, अगर इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो यह अस्थमा, साइनस की समस्या, नाक के संक्रमण या सांस लेने में तकलीफ का कारण बन सकती है। इसे डॉक्टर एलर्जी मास्क कहते हैं, इसलिए एलर्जी का समय पर इलाज करना बेहद जरूरी है। धूल और धुएं जैसे ट्रिगर से बचें, डॉक्टर की सलाह लें, लक्षणों को नजरअंदाज न करें। स्वस्थ सांस लेना सही देखभाल से शुरू होता है, कल सही इलाज करें और आराम से सांस लें।
0: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
2: दोस्तों, अब बात करते हैं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम नई सवेरा योजना। भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग मिलकर रहते हैं। समाज के सभी वर्गों के समान विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाती है। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसका लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, आवास, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं तक अल्पसंख्यकों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इसके माध्यम से छात्रवृत्तियां, स्वरोजगार के अवसर, महिलाओं का सशक्तिकरण तथा सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में नई सवेरा योजना भी एक

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को के लोग मिलकर रहते हैं। समाज के सभी वर्गों के समान विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाती रहती है। इसी में से एक है नया सवेरा योजना। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 15 सूत्री कार्यक्रम लागू किया है, जिसका लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, आवास, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं तक अल्पसंख्यकों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इसके माध्यम से छात्रवृत्तियां, स्वरोजगार के अवसर, महिलाओं का सशक्तिकरण तथा सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में नई सवेरा योजना भी एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन और कोचिंग सहायता उपलब्ध कराना है। इसके तहत अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं और रोजगारमुखी अवसरों के लिए तैयार किया जाता है, जिससे वे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सके। नई सवेरा योजना युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, इससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी क्षमता विकसित करने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर भी मिलता है। अंत में ये कहा जा सकता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम और नई सवेरा योजना अल्पसंख्यक समुदाय के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये योजनाएं शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण के माध्यम से एक समावेशी और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे रही है। दोस्तों, यहाँ लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये ट्रैक।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर। शाम के 5:30 में प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

गिरकर संभलना, संभल कर चलना, यही तो ज़िंदगी की असली पहचान है। मुश्किलें तो आएंगी हर कदम पर, मगर झुकना नहीं, यही तो शान है। जी हाँ, नमस्कार, आदाब सखियों, मैं रईसा महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का दिली खैर मकदम करती हूँ। प्यारी सखियों, मुसलमानों के त्यौहार में मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला दिन है और इसे चार पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। ये महीना गम, सब्र और कुर्बानी की याद दिलाता है, खासकर 10 मुहर्रम यानी आज का दिन, जिसे आशूरा का दिन कहते हैं, जब इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने करबला के मैदान में हक और इंसानियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अब बात यह आती है सखियों, आखिर मुहर्रम का इतिहास क्या है, आखिर करबला की जंग क्यों हुई। तो सखियों, सन 680 ईस्वी में यजीद ने इस्लाम के खिलाफ जाकर ज़बरदस्ती 17 हथियानी चाही। उसने इमाम हुसैन से अपनी बादशाहत को मानने को कहा, लेकिन इमाम हुसैन ने जुल्म के आगे सिर झुकाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यजीद के आगे सर नहीं झुका सकता। यजीद की बड़ी फौज ने इमाम हुसैन उनके परिवार को करबला के मैदान में घेर लिया। 10 दिन तक पानी बंद रखा गया, छोटे छोटे बच्चों को प्यासा रखा गया। 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन समेत 72 लोग शहीद हो गए, लेकिन जुल्म के आगे सिर ना झुकाया। इस दिन सखियों 1 से 10 मुहर्रम तक मस्जिदों और इमाम बाड़ों में मजलिस होती है, जिसमें करबला का वाकिया सुनाया जाता है। मुसलमान लोग 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। जगह जगह पानी, शरबत और खाना बांटा जाता है। इस प्रकार सखियों, मुहर्रम सिर्फ मातम का महीना नहीं है, ये हक के लिए लड़ने, जुल्म के खिलाफ खड़े होने और सब्र का संदेश देता है। इमाम हुसैन ने सिखाया, जुल्म के आगे कभी ना झुको, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। सच के रास्ते पर अकेले भी चलना पड़े तो चलो। औरतों और बच्चों की इज्जत करो और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा सवाब है। इस प्रकार से सखियों, ये चर्चा हुई मुहर्रम के बारे में। अब सुनते हैं ये नगमा।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

प्यारी सखियों, हर साल 26 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध व्यापार निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को नशीले पदार्थों के खतरों से बचाना और उनके अवैध व्यापार को रोकना है। सखियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को प्रस्ताव पास करके 26 जून को यह दिन मनाने का फैसला किया। 26 जून को ही चीन के लिन जेजू ने 1839 में हुमेम में अफीम को नष्ट किया था ताकि नशे के खिलाफ लड़ाई शुरू हो सके, इसलिए ये तारीख चुनी गई। हर साल इस दिवस की विशेष थीम होती है सखियों, और इस साल 2026 में इसकी थीम है द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, यानी सबूत साफ है, रोकथाम में निवेश करें। इसका मतलब है कि नशा रोकने के लिए पहले से ही काम करना ज्यादा जरूरी है। सखियों, जब कोई इंसान डॉक्टर की सलाह के बिना ही नशे की दवाएं, शराब, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकीन या सिगरेट का बार बार सेवन करता है तो इसका मादक पदार्थ दुरुपयोग ही कहलाता है। ये सेहत, परिवार और समाज तीनों को बर्बाद कर देता है। सखियों, नशे का सीधा नुकसान हमारी सेहत पर पड़ता है, जैसे लीवर खराब होना, दिल की बीमारी, कैंसर, दिमाग कमजोर और एड्स जैसी बीमारियों का खतरा पैदा होता है।

0: पेशे का प्रभाव परिवार पर भी पड़ता है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े, पैसे की बर्बादी और बच्चों की पढ़ाई का खराब होना है। समाज में चोरी, अपराध, सड़क दुर्घटना बढ़ती है। ऐसे में ध्यान रखें कि कभी भी दोस्तों के दबाव में या किसी के कहने पर भी नशा शुरू ना करें। अपने मोहल्ले, स्कूल में नुक्कड़ नाटक, पोस्टर के जरिए लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करें। खाली समय में खेल, योग, संगीत जैसी अच्छी आदतें अपनाएं। अगर कोई नशे में फंस भी गया है तो 1446 पर कॉल करें या नजदीकी नशा मुक्ति केंद्र पर जरूर जाएं। तो इस प्रकार से सखियों, नशा एक धीमा जहर है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। 26 जून का दिन हमें ये याद दिलाता है कि नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो। सिर्फ सरकार नहीं, हम सबको मिलकर अपने समाज को नशा मुक्त बनाना है। एक स्वस्थ युवा से ही एक मजबूत भारत बन सकता है। इस प्रकार से सखियों, ये चर्चा हुई अंतर्राष्ट्रीय मादक दुरुपयोग और अवैध व्यापार के बारे में। अब लेंगे यहाँ शॉर्ट ब्रेक।
1: क्या आप बार बार होने वाली छींकों और बंद नाक की समस्या को लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं? बिना इलाज के एलर्जी आगे चलकर ज्यादा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र बेड़ा, चेस्ट फिजिशियन नागौर से बोल रहा हूँ। एलर्जी सिर्फ छींक आने तक सीमित नहीं होती, अगर इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो यह अस्थमा, साइनस की समस्या, नाक के संक्रमण या सांस लेने में तकलीफ का कारण बन सकती है। इसे डॉक्टर एलर्जी मार्क्स कहते हैं। इसलिए एलर्जी का समय पर इलाज करना बेहद जरूरी है। धूल और धुएं जैसे ट्रिगर से बचें, डॉक्टर की सलाह लें, को नजरअंदाज न करें। स्वस्थ सांस लेना सही देखभाल से शुरू होता है। कल सही इलाज करें और आराम से सांस लें।
1: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
0: ब्रेक के बाद महिला जगत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्यारी सखियों, भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहाँ सभी धर्मों, जातियों और समुदाय के लोग रहते हैं। सबको समान विकास का अवसर मिले, इसी सोच के साथ भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम शुरू किया। ये योजना पहले मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानी जाती थी, जिसे 2018 में नया नाम देकर और मजबूत बनाया गया। सखियों, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास की कमी को दूर करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचा बनाना, जैसे स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, छात्रावास, अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्र, पेयजल योजना और खेल के मैदान बनाना है। अल्पसंख्यक बच्चों को, खासकर लड़कियों के लिए, अच्छी पढ़ाई और हुनर की व्यवस्था करना, गांवों कस्बों में अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र बनाना और पिछड़े इलाकों को बाकी देश के बराबर लाना, ताकि सबको बराबरी का मौका मिल सके। सखियों, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना से समाज के हर वर्ग को फायदा मिला है, जैसे गरीब बच्चों को अपने गाँव में ही अच्छा स्कूल कॉलेज मिल जाता है, लड़कियों के लिए हॉस्टल बनने से उनकी पढ़ाई नहीं छूटती, अस्पताल बनने से मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, युवाओं को कौशल केंद्र से ट्रेनिंग मिलती है तो रोजगार बढ़ता है। तो इससे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा सच होता है। इस प्रकार सखियों, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि बराबरी और सामाजिक न्याय का रास्ता है। ये पिछड़े इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ता है, जिससे समाज का हर वर्ग इस योजना का पूरा पूरा फायदा उठा पाएगा। अब बातों को देते हैं विराम और सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

सखियों, आंखें हमारे शरीर का सबसे नाजुक और ज़रूरी अंग है। गर्मियों का मौसम आते ही तेज़ धूप, गर्म हवा और धूल मिट्टी से आँखों को कई तरह की परेशानियाँ होने लगती है। तापमान बढ़ने से आँखों में जलन, खुजली, लाल होना, पानी आना और आँखों का सूखापन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इसलिए सखियों, गर्मियों में आँखों की खास देखभाल बहुत ज़रूरी है। सूरज की तेज़ अल्ट्रावायलेट किरणें आँखों के पर्दे को नुकसान पहुंचाती है। इससे मोतियाबिंद का खतरा बढ़ता है। गर्म हवा से आँखों का पानी सूख जाता है, जिससे ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है। लगातार एसी में बैठने से भी आँखें सूखने लगती हैं। तो सखियों, इन सब समस्याओं से बचने के लिए कुछ खास उपाय भी हैं, जैसे धूप में निकलते समय UV 400 प्रोटेक्शन वाला बड़ा सनग्लास जरूर लगाएं। इससे 99% हानिकारक किरणें रुक जाती हैं। दिन में 3 से 4 बार साफ ठंडे पानी से आंखें धोएं। इससे धूल मिट्टी निकल जाती है और ठंडक आंखों को मिलती है। रोज 8 से 10 गिलास पानी पिए। शरीर में पानी की कमी से आंखें सबसे पहले सूखती हैं। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच धूप बहुत तेज होती है। बाहर जाएं तो चौड़ी टोपी या छाता लेकर निकलें। खुजली होने पर आंखें ना रगड़ें, इससे इन्फेक्शन बढ़ता है। साफ रुमाल से हल्के से पोंछें। मोबाइल या लैपटॉप चलाते समय 20-20-20 यानी 20-20-20 का नियम अपनाएं। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूरी से इसे देखें। पूल या स्विमिंग पूल में स्विमिंग गॉगल्स पहने, ताकि क्लोरीन वाला पानी सीधा आंखों में ना आए। इस प्रकार सखियों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी आंखों की सुरक्षा खुद कर सकती हैं। क्योंकि कहा जाता है, जान है तो जहान है और आंखें हैं तो जहान खूबसूरत है। तो गर्मियों में थोड़ी सी सावधानी से हम अपनी आंखों को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। और अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में सुनते हैं ये गीत।

इसी के साथ सखियों समय हो गया है आपको गुड बाय कहने का, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहेंगे कि वक्त की धारा में बहना नहीं, वक्त की धारा में बहना नहीं, वक्त के साथ चलना सीखो। जो बीत गया वो किस्सा बन गया, और जो बाकी है उससे हिस्सा बनाना सीखो। तो अब दीजिए इजाजत अपनी सखी रईसा को, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: चाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए

0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 6:05 में अब हम आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की ओर और सुनवाते हैं फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का ये प्यारा सा नगमा, आवाज़ अस्किंग और ससा त्रिपाठी की।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंदाज से, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज़ है, संगीत नदीम सरवण का और गीत लिखा है समीर ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल है तुम्हारा से। आवाज़ अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की है, संगीत नदीम सरवण का और गीत समीर का।

श्रोताओं, अभी आपने सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत में प्यारे से नगमे। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर शाम के 6:20 में। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें हमारे आज के कलाकार है रामी बाई। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर में रामी बाई के गाए लोक भजन।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें आपने सुना रामी बाई को। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 होने को है। अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज। मानसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर जयपुर में कल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान करेंगे। वेरिको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेंगे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, ODOP कॉफी टेबल बुक और रैम पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। समारोह में रीको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, राज्य मंत्री के विश्नोई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। युवाओं और नई पीढ़ी में नशे तथा मादक पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने और उन्हें जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर देश प्रदेश में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। श्री शाह ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 1,18,00,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं।
3: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
2: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। डीग में जिला कलेक्टर राजकुमार कसवां की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी गई। नागौर में साइकिल जागरूकता रैली निकालकर नशा नहीं करने का संदेश दिया गया। जैसलमेर में माए भारत के स्वयं सेवकों ने नशे के दुष्प्रभावों को लेकर आमजन को जागरूक किया। पाली के बाली में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान समाज को नशे के नुकसान से जागरूक किया गया और नशा मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग करने का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल से आगामी 4 जुलाई से उड़ानें संचालित हो जाएंगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में पत्रकारों को बताया कि नए टर्मिनल से हवाई सेवाएं शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यहां पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
4: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अपितु पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी, उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग थी, आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाएं। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
2: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहीदों की याद में जुलूस के साथ ताजिए निकाले जा रहे हैं। इन्हें करबला मैदानों में परंपरागत तरीके से दफनाया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश भर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मजलिसें और धार्मिक सभाएं आयोजित की गईं। जयपुर के रामगंज, दिल्ली रोड और चार दीवारी क्षेत्र में जगह जगह लंगर और पानी की छबीलें लगाई गई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर मुहर्रम के मौके पर बड़ी संख्या में जायरीन ने फातिहा पढ़ी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में फातिहा पढ़ा गया। वहीं देश भर से आए जायरीनों द्वारा नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। दरगाह शरीफ से छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसे फजर से पहले झालरा के में सहराब किया जाएगा। नलमा धारीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
2: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आमजन से इस मॉनसून के दौरान अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज जयपुर के निमेड़ा स्थित एक गौशाला में आयोजित धार्मिक आयोजन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति भारतीय मूल्यों का आधार है। राज्यपाल ने गायों को चारा खिलाकर लोगों को जीवों के प्रति करुणा और दया भाव बनाए रखने का आग्रह किया। देश को सर्वाधिक सैन्यकर्मी देने वाला झुंझुनू जिले के वायु सैन्यकर्मी सुरेंद्र मोगा के सर्वोच्च बलिदान को नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट में शामिल किया गया है। सार्जेंट मोगा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के लिए प्राण न्यौछावर किए थे। उनके साथ 5 अन्य जवानों को भी वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही युद्ध स्मारक की 3D वॉल पर भी सुरेंद्र मोगा का नाम अंकित किया गया है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद भारतीय सैनिकों की सही सूची देश को देने की बात कही थी। भीलवाड़ा में जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र की ओर से औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाया गया। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि इस अवसर पर युवा संबल मेला भी आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमी के तौर पर प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना था। झुंझुनू जिले के कुतुबपुरा गांव में नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान की ओर से आज नॉन वाटर शेड परियोजना का शुभारंभ हुआ। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ने ग्रामीणों को वर्षा जल संरक्षण अपनाने और खेतों में अजोला और कम पानी की फसलें उगाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में बैंकिंग सेवा के विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनाओं की शुरुआत की भी बात कही। और अब मौसम। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। इस दौरान दक्षिणी जिलों में भी कई जगह पर तेज बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के अनुसार झालावाड़ जिले के अकलेरा में सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर बारिश रिपोर्ट हुई। राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहे और कई जगह पर बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इस बीच मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और भागों में भी आगे बढ़ा है। इसके अगले हफ्ते तक मध्य और उत्तरी भारत तक पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। IRCTC ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर शुरू किया है। इसके लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। प्रायोगिक तौर पर शुरू होने वाली इस 11 दिन की रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। इसके लिए IRCTC के टूरिज्म पोर्टल पर या IRCTC पर्यटन कार्यालयों पर बुकिंग कराई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मातमी पर्व मोहर्रम आज श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिले में सुबह से ही रंग बिरंगे ताजिए निकाले गए। इस दौरान मोमिनों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन किए। इससे पहले प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए शहर की निगरानी बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए। शांति समिति की बैठक में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने जुलूस के दौरान अफवाह, नशा, गुंडागर्दी या अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। साथ ही आमजन से शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। पिछले दिनों पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने चित्तौड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सहकारी संस्थाएं समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बैंक की प्रगति और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं आम जन को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना कर राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर 12 साल विश्वास के जन कल्याण के की थीम पर 3 दिवसीय जिला प्रदर्शनी भी लगाई गई। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री के तहत राज्य सरकार एवं एलिम्को के सहयोग से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और सांसद सीपी जोशी ने शिरकत की। शिविर में 800 वरिष्ठ नागरिकों को 75 लाख रुपए मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए। पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ सांसद और एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में उदयपुर में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद सीपी जोशी ने उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को पश्चिम भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एवं विमानन केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने एयरपोर्ट पर टर्मिनल विस्तार, वाईफाई, डिजिटल सूचना प्रणाली, रनवे विस्तार, कार्गो हब एवं एरोसिटी विकास की संभावना पर विस्तृत रोड मैप तैयार करने का भी सुझाव दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने भारतीय पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग, नगर परिषद और यूआईटी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने दुर्ग पर हुए अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई कर अतिक्रमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में दुर्ग में विकसित की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, विद्युत साज सज्जा और यातायात प्रबंधन को भी प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ई वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए वेस्ट संग्रहण अभियान का शुभारंभ करते हुए ई वेस्ट रथ को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर ने

0: आमजन से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने की अपील की। इसी कड़ी में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत चित्तौड़ दुर्ग पर महास्वच्छता अभियान चलाया गया। जिले में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संकल्प और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में योग गुरु सुरेश शर्मा और डॉक्टर मुकेश माली ने योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम के दौरान योग स्थल पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी लाइव प्रसारण किया गया। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सू पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ MSME ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਾਥੇ ਰਾਜੀ ਸਤਰੀ ਆਯੋਜਨ ਕਾਲੇ ਜੈਪੁਰ ਮਾਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵੇਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨੇ ਰੋ ਹੇਲੂ ਕਰਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੁਹਰਮ ਅੱਜ ਅਕੀਦਤ ਅਰ ਐਹਤਰਾਮ ਦੇ ਸਾਥੇ ਮਨਾਇਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਤਮ ਦੇ ਵਿਚੇ ਕਰਬਲਾ ਮਾਏ ਤਾਜ਼ੀਆ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਏ ਲਾੜਲਾ 24 ਘੰਟਾ ਮਾਏ ਕੁਛ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮਾਥੇ ਬਿਰਖਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਰੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਤਾਈਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਦਵਾਰੀ ਆਸ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੇ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਅਬ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਗਤਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ MSME ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਾਥੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਮਾਏ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਣ ਜਲਸਾ ਮਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਤਥਾ ਵਾਣਿਜਯ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਰਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਔਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਡਮੀ ਚੈੱਕ ਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੈ ਰਿਕੋਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਰਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭੂਮੀ ਆਵੰਟਨ ਪੱਤਰ ਔਰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸੌਂਪੇਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਏ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੇ ਚਾਲਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ODOP ਕੌਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਔਰ ਰੈਂਪ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਲਾ ਜਲਸਾ ਮਾਏ ਰਿਕੋਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਆਵੰਟਨ ਪੱਤਰ ਔਰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮਾਏ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਲ ਰਾਜਵਰਧਨ ਰਾਠੌੜ ਔਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮੇਤ ਵਰਿਸ਼ਠ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਯੁਵਾਵਾਂ ਔਰ ਨੂਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਏ ਨਸ਼ਾ ਔਰ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੇ ਬਦਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੇ ਰੋਕਣੇ ਔਰ ਵਾਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨੇ ਖਾਤਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਓ ਜਾਵੇ ਹੈ ਇਣ ਮੌਕੇ ਮਾਥੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਏ ਨਿਆਰੀ ਨਿਆਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਖੀ ਜੀ ਨੂਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਏ ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਵੈਰ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨੇ ਰੋ ਹੇਲੋ ਕਰਿਓ ਵਣਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੋ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਔਰ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿਸ਼ਯ ਖਾਤਿਰ ਮੋਟੋ ਖਤਰੋ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਯੁਵਾਵਾਂ ਔਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੂੰ ਇਣ ਅਭਿਆਨ ਮਾਏ ਮਿਲਰ ਭਾਗ ਲੇਵਾਰੀ ਅਰਜ ਕਰੀ ਹੈ ਇਣ ਮੌਕੇ ਮਾਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹੋ ਕਿ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚਾਲਤਾ 1,18,00,000 ਕਿਲੋ ਸੂ 32 ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਿਓ ਗਿਓ ਹੈ ਵਣਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਂਕੜੋ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗੋਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦਰਸਾਵੇ ਹੈ
1: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस इसका उद्देश्य है पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है
0: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਮਾਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਏ ਨਿਆਰੀ ਨਿਆਰੀ ਜਗਾਵਾਂ ਮਾਥੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਡੀਗ ਮਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸਵਾਰੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਮਾਏ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਇਣ ਮਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਾਗੌਰ ਮਾਏ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਨਿਕਾਲਰ ਨਸੋ ਨੀ ਕਰਨੇ ਰੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜੈਸਲਮੇਰ ਮਾਏ ਵੀ ਮਾਏ ਭਾਰਤ ਰਾ ਸਵਯਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਰਾ ਬਾਰਾ ਮਾਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲੀ ਰਾ ਬਾਲੀ ਮਾਏ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਕਾਨੀ ਸੂੰ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਨ ਰਹਿ ਚਾਲਤਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਿਓ ਗਿਓ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਰਹਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਏ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨੇ ਰੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਗਿਓ ਸਵਾਸਥਯ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮਾਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰੋ ਮਸੋਦੋ ਜਾਰੀ ਕਰਿਓ ਹੈ ਇਨਰੇ ਤਹਿਤ ਆਯਾਤ ਕਰੀ ਜਾਵਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਚੋੜੀ ਵੈਧਤਾ ਅਵਧੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਆਯਾਤ ਰੇ ਬਕਤ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 12 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਵਿਕ ਦਵਾਵਾਂ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਫਾਰਮਾਸ਼ੂਟੀਕਲ ਦਵਾਵਾਂ ਖਾਤਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਵੇਲਾ ਇਨ ਖਾਤਿਰ ਆਯਾਤਰੀ ਵਕਤ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 60% ਸੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੋਣੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਜਬ ਇਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੂੰ ਦਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਮ ਵੇਲਾ ਔਰ ਦਵਾ ਭੰਡਾਰ ਰੋ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗ ਵੇ ਸਕੇਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਵਲ ਆਯਾਤਰ ਵਕਤ ਦਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਚੋੜੀ ਸੈਲਫ ਲਾਈਫ ਸੂੰ ਜੁੜਿਓੜੋ ਹੈ जोधपुर हवाई अड्डा माथे नुआ टर्मिनल सू आवती 4 जुलाई सू उड़ाना संचालित वेला केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर माए पत्रकारा ने बतायो कि नुआ टर्मिनल सू हवाई सेवावां शुरू होने सू पश्चिमी राजस्थान री कनेक्टिविटी बदली और पर्यटन और औद्योगिक विकास ने नुवी ऊंचाइयां मिलेली।
2: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अपितु पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग थी आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: ए समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रिया हो। पैगंबर मोहम्मद रा नवासा हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है। इन मौके माथे शहीदारी याद माए जुलूस रे साथे ताजिया निकालिया जा रिया है। इन्हें करबला मैदान माए परंपरागत रीत सू सुपुर्दे खाक करियो जा रियो है। इन सू पहलिया प्रदेश भर माए मुस्लिम बाहुल्य इलाका माए मजलिसा और धार्मिक सभावां राखी जी। जयपुर रा रामगंज दिल्ली रोड और 4 दीवारी खेतर माए जगह जगह लंगर और पानी री छबीला लगाई जी। अजमेर माए मुहर्रम रे मौके माथे खासो उछास देखियो जा रियो है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती री दरगाह माथे फातिहा पड़ी और ब्यूरो माणा खबर नवीसु।
3: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में फातिहा पढ़ा गया। वहीं देश भर से आए जायरीनों द्वारा नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। दरगाह शरीफ से छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है जिसे फजर से पहले झालरा के में सहराब किया जाएगा। नलमा धारीच आकाशवाणी समाचार अजमेर।
0: राज्यपाल हरिभा बागड़े आम जनसू इन मॉनसून रे चालता 32 पेड़ लगाने रो हेलो करियो है। राज्यपाल आज जयपुर रा निमेड़ा थापित एक गौशाला माए राखी जा धार्मिक आयोजन माए भाग लियो। इन मौके माथे वणा कहो कि सनातन संस्कृति भारतीय मूल्यारो आधार है। राज्यपाल गया ने चारों खिलार लोगा ने जीवा रे प्रति करुणा और दया भाव बनाए राखने री अरज भी करी। देश ने सबसू 32 सैन्य कर्मी देवन वाला झुंझुनू जिला रा वायु सैन्य कर्मी सुरेंद्र मोगा रे सर्वोच्च बलिदान ने नेशनल वॉर मेमोरियल री वेबसाइट माए बेड़ो करियो गयो है। सार्जेंट मोगा ऑपरेशन सिंदूर रे चालता देश खातिर आपरा प्राण न्योछावर करया हा। मारे साथे दूजा 5 जवाना ने भी वेबसाइट रे रोल ऑफ ऑनर माए भेड़ो करियो गयो है। इनरे साथ ही युद्ध स्मारक री 3D वॉल माथे भी सुरेंद्र मोगा रो नाम लिखियो गयो है। ध्यान जोग है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद माए एक सवाल रे जवाब माए ऑपरेशन सिंदूर रे चालता शहीद भारतीय सैनिकारी सही सूची देश ने देने री बात कही ही। भीलवाड़ा माए जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र री कानिसू औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगायो गयो। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा बतायो कि इन मौके माथे युवा संबल मेलो भी राख्यो गयो। इनरो लखस युवावां ने उद्यमी रे तौर माथे प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार खातिर प्रेरित करयो गयो है। झुंझुनू जिले रे कुतुबपुरा गांव माए नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान री कानिसू आज नॉन वाटर शेड परियोजना रो शुभारंभ हुयो। नाबार्ड रा मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ग्रामीणा ने बिरखा रे पानी ने भिड़ो करने और खेता माए अजोला और कम पानी री फसलां उगाने रो हेलो करियो। इन मौके माथे वणा खेतर माए बैंकिंग सेवावां रे विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनावां री शुरुआत री बात भी करी। IRCTC नुओ पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर शुरू करियो है। इन रे खातिर भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जावेली। प्रायोगिक तौर माथे शुरू होने माथे इन 11 दिन री रेल यात्रा रे चालता श्रद्धालुओं और सैलानिया ने उत्तर प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंगाल और झारखंड रे खास तीर्थ स्थला माथे जावन रो मौको मिलेला। आ यात्रा दिल्ली माए सफदरगंज रेलवे स्टेशन सू शुरू वेली। रेलगाड़ी माए यात्रियां ने 3-स्टार होटल माए रुकाणो भोजन समेत AC वाहना माए दर्शनीय स्थल माथे घुमाया जावेला। इनरे खातिर IRCTC रे टूरिज्म पोर्टल माथे या IRCTC पर्यटन कार्यालय माथे बुकिंग कराई जा सके है। अरब मौसम प्रदेश माए लाडला 24 घंटा रे चालता पूर्वी और पश्चिमी भागा माए कुछ एक जगावा माथे बारिश की गतिविधियां दर्ज करी जी। इंद्रे चालता दक्षिणी जिला माए भी कई जगावा माथे तेज बिरखा दर्ज हुई। मौसम महकमे रे मुजब झालावाड़ जिला रा अकलेरा माए सबसू 32.5 सेंटीमीटर बिरखा दर्ज हुई। राजधानी जयपुर समेत आसे पासे रे इलाका माए आज बादल छाया रिया और कई जगावा माथे बूंदाबांदी हुई। महकमा रे मुजब आवता 2-3 दिना माए बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग माए प्री मानसूनरी बिरखारी गतिविधियां बणियोड़ी रह सके है। इन बीचे मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश रे कई और भागा माए आगे बढ़ियो है। इन रे अगले हफ्ते ताई मध्य और उत्तरी भारत ताई पहुंचने खातिर परिस्थितियां अनुकूल बणियोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून ने आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करेला। ओ मासिक रेडियो कार्यक्रम रो 135वां एपिसोड वेला। कार्यक्रम रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनला AIR न्यूजरी वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप माथे करियो जावेला। साथे ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे इनरो सीधो प्रसारण भी वेला। हिंदी प्रसारण रे तुरंत पाछे क्षेत्रीय भाषा मा माए भी कार्यक्रम रो प्रसारण करियो जावेला। और आखिर माए खास खास खबरां आप एक कर फेरू सुनो। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस रे मौके माथे राज्य स्तरीय आयोजन काले जयपुर माए। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी री लॉन्चिंग वेला। गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस रे मौके नशे रे खिलाफ एकजुट होर युद्ध छेड़ने रो खेलो करियो। हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है। मातम रे बीचे करबला माए ताजिया दफनाया जा रिया है। और प्रदेश माए लाड़ला 24 घंटा माए कुछ एक थोड़ा माथे बिरखारी गतिविधियां जारी। मानसून रे अगले हफ्ता ताई और आगे बदवारी आस है। इन रे साथे ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठे ही पुरोव्यो माणा। आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
4: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7 बजने वाले हैं। प्रस्तुति कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने सगड़ा किसान भाया ने बाया ने और नैना नैना टावरा ने आपरे राकेश भैरा घना हेतु कोडू राम राम। भाया आ सुबह उठ्या जज सुई उमस ही और पसीना सु हाल है जिको खराब हो गया, पण 12 बजिया पछे है जने चौपालकण आवतो उन टाइम है जिको बिरका आवती ही और थोड़ी देर है जिको 1-2 बजिया है जिको के कटई तेज तो कटई धीरे बरसात शुरू होगी और बरसात भी तेज हवा के सागे है जिको धीरे धीरे कणी तेज और कणी रुक रुक कर, पण बरसात सिंजा तक यानी कि अबार 5-10 मिनट पहली तक है जिको बूंदा बूंदी होती रही, पण मौसम चोखो हो गयो। ई बिरखा सु है जिका किसान भाई है जिका अपने उड़ीक रखेवा के भाई अपने फसल भावा तो बे भावन वाली भी तैयारी में ला गया और

केवल अपने व्यक्ति के शरीर ने ही नहीं बल्कि मेरे परिवार ने, समाज ने, देश के विकास ने भी प्रभावित कर्या करे। नशा देखो के शराब को, तंबाकू को, गुटखा को, सिगरेट को, बीड़ी को, अफीम को, गांजा को, चरस को, हेरोइन को और अन्य कई यान का पदार्थ आवे जिको है जिको आपां के शरीर और आपां को जिको मस्तिष्क है ब्याने गंभीर रूप है जिको प्रभावित करे। नशा को काई काई दुष्प्रभाव हुए देखो, सब पहले तो आपां को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जावे और इरे आगे ही आपां को जिको हृदय है, फेफड़ा है, लीवर है, मस्तिष्क माते भी है जिको गेरो प्रभाव पड़िया करे। पढ़ाई और कार्य क्षमता में भी कमी आवे, आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जावे, क्या हो जावे कि भाई आपा है जिको भी नशान करण वास्ते पैसों खर्च कर रहा जने वो आपा की जिको जमा पूंजी है बाद धीरे धीरे खत्म हो जाए, यानी कि आर्थिक स्थिति ने भी अवकाई करिया करे कमजोर कर देवे। परिवार के मायने तनाव और सामाजिक समस्याएं भी बढ़ जावे, अपराध और सड़क दुर्घटनाओं में भी संभावना ज़्यादा बढ़ जावे क्योंकि नशों कर लोग गाड़ियाँ चलावे। आप तो खुद अपने दुर्घटनाग्रस्त हुए, हाँ हमला जिका हिदा हादा लोग है ब्याने भी है जिको दुर्घटनाग्रस्त कर ब्याने भी है जिको नुकसान पहुँचा देवे और अपराध भी करे क्योंकि ब्यांकन नशो नहीं मिले जन बेकाई करी क्या नहीं कर ब्याने वो नशो पाउन वास्ते ब्याने है जिको पैसा लेना पड़ी जन बेकाई करी पैसा को कबाड़ वास्ते बे है जिको अपराध भी कर लेवे। तो कुल मिला नशो है जिको नुकसान ही करे। नशा बचाओ को काई उपाय है कि भाई नशा है जिको शुरुआत में कभी नहीं करना चाहिए, नशो चाहे को हुए ना तो भी आपने नहीं करना चाहिए। लोग है जिको पहली परोत थोड़ो दे देवे चखा देवे वीर पछे जिको आपने बाद थोड़ी दो चार बार दे दे जन लत पड़ जावे बा लत आपने जिको नहीं राखनो। नशो राखनो रोटी रो और काम को, जे आपा ए दो नशा राखा नहीं तो आपा को जीवन है जिको वारी वारी जाए, यानी कि आपने है जिको जीवन में हमेशा सफलता ही सफलता मिली। और आपने है जिको आपा का दोस्त है जिका भाई छोका राखना चाहिए जिका कोई भी नशो पतो नहीं करे। और अगर कोई भाई लो या कोई दोस्त नशो करे तो ब्याने है जिको आपने नशा को बतावनो के इतो नुकसान करे तो है जिको वो धीरे धीरे अभी नशो आपने छुड़ानो है, पकड़ानी कोई भी चीज नहीं है। तो अपन नशो छुड़ावा तो वो भी आपा को है जिको एहसान मानी के भाई फलानो है जिको मैं नशा करतो जिको मैंने नशो छुड़ा दियो। इरे अलावा आपा के जिको खेल योग और व्यायाम हुआ आपा है जिको जीवन के मायने आपा जे अपनावा तो बीसु है आपा है जिको नशाऊ बच सका। तनाव होणो है जिको परिवार शिक्षक और आपा है जिको के बातचीत परामर्श क्यों आपने सलाह भी ले सका, जान आपने कोई टेंशन हुए तो बीरो इलाज कोई अपने नशा की चीज थोड़ी है, बीरो इलाज हो ये कि आप दो जना ने बात कहवा कि भाई मारे आ चीज है मारे आ टेंशन है तो भाई आपने काई करी के बताई और धीरे धीरे वो आपा के काई होई बाजी की टेंशन है तनाव है वो धीरे धीरे कम हो जाए। इस वास्ते कोई भी आपा के कोई समस्या है तो बिना बैठर हल करनो है जिको वो बीरो सबू बड़ो है जिको दवा है। इसके अलावा आपने जागरूकता कार्यक्रम में भी भाग लेना चाहिए और आपा तो लेवा ही लेवा सागे दूसरा ने भी आपने है जिको प्रेरित करना चाहिए कि भाई कोई नशो करे तो भाई बट्टे है जिको के वो आपने है कार्यक्रम चाले भी मैं थे जरूर भाग लेवो। अपने है जिको के भाई नशा मुक्ति वास्ते आपने संकल्प करना चाहिए कि भाई मैं जिको नशा न तो करूँ उन्हें आपने है जिको कदई करन दुखी नहीं आपा की तरफ पूरी कोशिश करनो चाहिए कि भाई आपा है जिको भी ने नशो करण रोकनो चाहिए। इर अलावा है जिको मैं और मारे परिवार ने या मारा जिका भी मित्र है दोस्त है ब्याने नशा दूर राखूँ और ब्याने दूर रखने वास्ते प्रेरित भी करूँ और इर अलावा मैं जिको स्वस्थ सुरक्षित और नशा मुक्त समाज के निर्माण में है जिको योगदान देवा केवे ना बूंद बूंदू घड़ो भरीजे। अपा दो दो जना एक आदमी दो दो चार चार जना ने भी जे अगर नशाऊ रोक सके तो धीरे धीरे वो कहे ना बूंद बूंदू घड़ो भरी जाए तो चार बे चार आदमी और अगला चार ने धीरे धीरे आपा को भारत है जिको पाछो विश्व गुरु बन जाए जद आपा है जिको आपा को देश नशा है जिको दूर जापरे। इर अलावा आपने है जिको कि भाई देखा भी आके जगह जगह आपने है जिको सड़का माते जिकी दीवार हैं ब्याग माते लिखोड़ो है भाई नशा छोड़ो जीवन से जोड़ो नशे को कहे ना खुशियों को कहे हाँ नशा नहीं शिक्षा अपनाए। आपने है कुल मिला रहे जिको के आपने है जिको नशा दूर रहो क्योंकि एक आपा है जिको आपा को जिको भारत है बिने आपने नशा मुक्त बनानो है आपा को भारत है जिको स्वस्थ भारत बनानो है एक स्वस्थ और विकसित राष्ट्र वास्ते जिको आवश्यक है
कि बीका जिका देश में जिका नागरिक रहे वे है जिको नशों दूर रहे वे, क्योंकि

0: देश की बागडोर की माते है, आपां देश के नव युवक माते है। अगर नव युवक है जिको स्वस्थ रही तो आपां को देश है जिको भारत अपना आप ही आगे बढ़ी। और युवाओं में विशेष रूप है जिको के नशा के दुष्प्रभावों बचन की आपने जरूर जानकारी देनी चाहिए। जे अगर कोई शिकार हो गयो है तो बिन है जिको के बिरो अनादर नहीं कर यानी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बिन धीरे धीरे बिन समझावना चाहिए, बिन परामर्श देना चाहिए। और जी टाइम भी बिन नशा की बा आदत आवे कि भाई चाहिए तलब हुए तो भी टाइम आपने है जिको बिरो ध्यान है जिको के भाई दूसरी तरफ कर देना चाहिए। जहाँ नशा की चीज आवे भी टाइम आपने है जिको के भाई कोई छोकी खाउन की चीज यान की दे दो ब्यो है जिको भी रे बात तलब भी जाप रही और बात शरीर ने नुकसान नहीं कर फायदो ही करी। के जान भाई आपने कोई सुपारी खावे तो सुपारी की जगह आपा भी ने है जिको काजू अखरोट है बिदामा है बे आपा कह सका भाई थने जान भी खाउन की इच्छा हुए बेगा खाई लो तो वो काई करी खाउन की चीज भी ने खाउनी पड़ी पर बाहे जी की चीज नुकसान नहीं कर फायदो ही करी। तो इस वास्ते अपन है जिको के जो भी कोई नशो करे बीरो तिरस्कार नहीं कर बीरो अपन है जिको धीरे धीरे बिने समझावनो चाहिए, बीरो उचित उपचार भी करनो चाहिए, बिने परामर्श भी देनो चाहिए और बीरो सहयोग भी करनो चाहिए। क्योंकि नशो छोड़नो है जिको के शुरुआत में है जिको नशा की कोई आदत हुए ना बा होरी होरी छूट जाओ पर बा आदत पूरी अगर 5-10 साल हो गया नहीं तो बा छोड़ता छोड़ता टाइम लागे। इस वास्ते दृढ़ इच्छा शक्ति और परिवार को सहयोग हुए ना तो और अपा है जिको कोई डॉक्टर हुए जिको सलाह मशवरा कर सका और सकारात्मक वातावरण के माध्यम हुए जिको आपा कोई भी आदमी है चाहे वो केड़ो भी नशो करे बिना आपा छुड़ा सका। तो देखो भाई आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर आपा कितनी हाथरी आंतरी बात करी कि भाई आपा ने जिको नशो दूर रहना चाहिए, नशा खाली आपने काम को करना चाहिए और रोटी रो नशो हमेशा राखनो चाहिए। अब देखो कि भैया आज मैं है जिको गांव छापड़ा के उन्नत किसान चंद्र सिंह जी हूँ जिकी बंतल करी बाथाएं तय करू पूगती लो सुनो।
1: भैया आज देखो कि लगे हाथ एक भाई मिलिया है अरे रबिया को करा तावड़ी राम राम सा
2: राम राम सा
1: काई नाम है सा
2: नाम चंद्र सिंह है
1: चंद्र सिंह जी। तो चंद्र सिंह जी आपां को किसो गांव है
2: छापड़ा है सर।
1: तो चंद्र सिंह जी आपांगे है जी को कितना बीघा जमीन है
2: जमीन सा 50-55 बीघा है
1: 50-55 एक टक्की है कि टुकड़ा हाँ। मायन है
2: नहीं टुकड़ा में
1: टुकड़ा मायन है कितना टुकड़ा है
2: वो है अलग अलग
1: कितना बीघा का है
2: एक 20 है एक 22 है
1: अच्छा एक टुकड़ा और है तीन टुकड़ा है अच्छा बाड़ी है बा तो अबार अपन के खेती मायने भाई लिया के अबे तैयारी कर रिया हो
2: नहीं भाई लिया अबार
1: भाई लिया काई भाई हो अबार
2: अबार बाजरी भाई मूंग भाया
1: बाजरी और मूंग भाई ने कितना दिन हो गया चंद्र चंद्र जी
2: 15 दिन होगा सा
1: 15 दिन हो गया जने तो अपन के परावल भी हो गया वाला आज जिकी ये छांटा छिड़का हुई अटे आकाशवाणी का आयोजन है तो अटी तेज ही बरसात तो आपांगे बटी ने हुई की गांव बरसात
2: हाँ बरसात आज वाली हुई ना बढ़िया है
1: बढ़िया हुई है जने आपांगे हाँ, तो फायदो ही है जने अबे हाँ, तो 5-7 दिन ना निनाना जाए नी
2: बिल्कुल निनाना जी।
1: तो चंदू जी एक बात पूछूं कि आपांगे कितना बीघा में बाजरी भाई कितना बीघा में मूंग भाई हो
2: बाजरी 15 बीघा बाजरी है
1: हाँ हाँ
2: और बाकी मूंग है
1: बाकी मूंग है तो दोनों खेत बाड़ी तीनों ही भाई दिया
2: हाँ तीनों ही भाई दिया
1: तो तीनों हागे भाया के आगे लारे फरक हो 2-4 दिन को
2: हाँ 1-2 दिन को फरक हो एक में बाकी 2 साथ ही भाया
1: तो जिका में बाजरी भाई भी हूँ अपने भाई हूँ पहली काई तैयारी करियो खेत के मायने
2: भाई हूँ पहली भाई हूँ पहली भाई सूड़ उड़ करियो
1: हाँ
2: सूड़ करियो और बस बाद दियो
1: पच्चे पेल का इरमाइन काई भाई उड़ो जिका बाजरी भाई
2: पेल के एक मायन गवार मूंगा
1: मूंग गवार हा जाने अब की के वो फोर भाई हूँ काई फायदो है जान गवार की जगह अब की के वो भाई आओ यूँ काई फायदो है हाँ भाई पेल का गवार हो जाए अब की के बाजरी भाव यूँ काई फायदो है
2: फोर फोर फायदो खेत नहीं हो जावे अलग अलग भाव
1: अच्छा
2: तो एकदम चोको हुआ
1: है हाँ बा बात बढ़िया बताई चंदू जी आपांगे पचे इन मायने खाद वगैरह किसी ने की
2: खाद तो आप घर की खाद ही
1: अच्छा घर की
2: गाय है गाय है
1: अच्छा काई काई डाव डांडा रखो गाया भैंसिया कितनी गाय है कितनी भैंस है
2: दो गाय है भैंस
1: अच्छा दो गाय है भैंस है भैंस किसी नस्ल की है
2: खुंडी
1: खुंडी है
2: खुंडी
1: हाँ और गाय किसी है देसी है एक
2: गाय देसी है एक जर्सी है
1: एक जर्सी है ये मैं पता है तीन नाम दूजे किसी है
2: गाय दूजे अच्छा दूजे भैंस दूजे
1: अच्छा गाय भैंस गाय पचे किसी देसी दूजे के जर्सी वाली दूजे
2: जर्सी जर्सी
1: जर्सी पचे कितो एक टाइम को दूध देवे गाय जर्सी गाय?
2: जर्सी गाय 3.5-4 किलो।
1: 3.5-4 किलो। और भैंस कितो देवे एक टाइम को?
2: भैंस देवे 5-6 किलो।
1: 5-6 किलो। पचे दूध को गाय करो घरे बपराओ के डेयरी में देवो?
2: नहीं डेयरी में देवा।
1: डेयरी में पचे भावड़ा क्या मिले?
2: डेयरी में भाव फेटी अनुसार मिल जावे।
1: हाँ हाँ कितना मिले जान गाय का भैंस का?
2: गाय का तो 45-50।
1: हाँ और भैंस
2: 60-65।
1: 60-65 मिल जावे तो भैंस भी आया कितो टाइम हो गयो?
2: भैंस ने टाइम होगा 5-7 महीना होगा।
1: 5-7 महीना हो गया। और गाय ने?
2: गाय अभी गई है 2-1 महीना।
1: 2-1 महीना हो गया। और जिकी बात देसी गाय है बा गया बनेगी?
2: हाँ बा गया बने।
1: बा कितना टाइम में ब्याह?
2: बा तो 2-3 महीना में ब्याह।
1: 2-3 महीना में ब्याह होने वाली है। तो पचे अपने हुआड़ में काई काई दियो पचे? और काई काई देव हुआड़ में? हाँ
2: हुआड़ में मेथी अजवाइन रही देवा सिंधी सोर।
1: हाँ कितना दिन तक देवो?
2: महीना भर देवा।
1: महीना भर देवो बहुत कहे ना अपने देर लेनो है आप छो को देवा तो जिस अपने दूध दे
2: जिस दूध चोखो हो बिल्कुल।
1: हाँ एक और बात पूछू चंदू जी के आपा के है जी को गोबर को पचे थे खुद डिगड़ो कर ने को के अपने कंपोस्ट बनाओ क्या न करो के जो डिगड़ो कर ने का? हाँ
2: नहीं है जो डिगड़ो ही करा है डिगड़ो कर रख दे खेत में
1: अपन के है जी को चारू मेर खेत के तारबंदी करियोड़ी है के जाली करियोड़ी है के कोट चुनियोड़ो है काई करियोड़ो है?
2: नहीं तारबंदी कौन करेड़ी यही है।
1: यही है पचे अपांगे नुकसान को नहीं की डाव डांडा को?
2: नुकसान को ध्यान रखना पड़े रे।
1: अच्छा रेवनो पड़े?
2: रेवनो पड़े।
1: हाँ पचे किस जानवर ज्यादा नुकसान करे? घंस उल्टा को नहीं की बटी?
2: नहीं घंस उल्टा को नहीं माका नहीं माकन रोजड़ा ही है ज्यादा।
1: रोजड़ा हांडार है नी?
2: रोजड़ा रही है।
1: अपांग है जी को के ओ जान खेत भाई अब ओ थे खुद ही घर का ही निवेड़ लो के अपने अपने मजदूर वगैरह लगाओ?
2: मजदूर वगैरह लगाओ।
1: घर का हज को नहीं आयो?
2: नहीं घर का हज को ना मजदूर लगाना पड़े।
1: अपांग है जी को जान थे क्यों आज बरसात ताजी हुई ताजी हूँ अब अपांगे तो फायदो ही है और अब कितना दिन बरसात नहीं हुए तो फायदो है अपांगे?
2: अब 10 दिन और नहीं हुए तो ठीक है।
1: आज तो ताजी कितना आंगल बरसात होगी? आज
2: आज ताजी आज 5-5-7-7 आंगल ही है।
1: 5-5-7-7 आंगल होगी। पचे थे क्यों के भाई बाजरी भाई गवार भाई मूंग तो यहाँ का पचे बीज कटू लाया?
2: बीज तो पहली वाला रखा मैं खुद ही।
1: अच्छा खुद का घर का ही बीज है? हाँ
2: खुद का घर का ही बीज रखा।
1: घर का बीज पचे क्या टाड़ो थे खेत के मायने के भाई ए वो बीज ताजो है वो बीज ताजो है
2: जितना लंबा छिटा हुआ है जितना बढ़िया हुआ है साबुन देख रख लिया भाई आप चोखो है गुआर हुआ तो गुआर चौकी फड़े घनी लागे
1: अलग अलग टाल टाल रख लो
2: टाल टाल रख ले वो काम ले लिया
1: वो काम ले लो। तो पच्चे साल भर याने सुरक्षित क्या रखो थे घरे भाई मोंगर मोटर है गुआर है राखनो भी तो पड़े ना अपन बयान क्या रखो पच्चे काई
2: एक मान बांधी आंधी डाल रखनो पड़े एक मान
1: डाट रख दो।
2: हाँ डाट रख दिया काम आ गया।
1: अब आज ध्यान से बतायो भाई गाय भैंस दूजे बाग्या बने तो पचे या नबार बंटा मेर सारा मेर काई देवो? अबार तो लिलो भी तो होगी ओला
2: ना अबार तो है लिलो कचरो को ना उड़े बार तो बरसात होगी 5-5-7-7 दिन 2-3 बार चौकी लिलो उड़े है बाकी उत्तर सुको चारो दे दे बाकी।
1: हाँ और बंटा में काई देवो पचे
2: बंटा में खड़ देव
1: पर अंदाज भी देवो के तोल देव दूध के हिसाब देवो?
2: नहीं अंदाज देवा 1.5-2 किलो।
1: 1.5-2 किलो
2: 1.5-2 किलो
1: सुबह शाम? सुबह शाम
2: सुबह शाम सुबह शाम।
1: और जिकी क्या बन गाय बीने भी देवो कौन देवो की
2: बीने थोड़ो देवा बंटो देवा
1: बी का फायदो है
2: बी बोबार देवा दूध चोको हुई
1: सही बात है। तो आ काई देसी गाय जिकी पहले उठनी है के दूजी बार है? दूजी आन है आ पहली की तो दूध देवती
2: देवती पहल पोटती 2-2.5 किलो ही।
1: अच्छा पर देसी गाय को दूध हवा दे जिमण में घीर हगड़ोई बढ़िया रहे?
2: बढ़िया रहे देसी गाय।
1: और चंदू जी एक और मैं बात पूछूं कि आपां को जी को कार्यक्रम सुने किसान भाई बहन बहन से काई संदेश देनी चाहो कि आ चीज आपा करा तो आपां फायदो हुए
2: वास्ते ता ना संदेश देना चाहूं भाई दवाई हुआ है जिकी आजकल छिड़का कम करा कम छिड़का
1: क्योंकि देखो तरह तरह की बीमारियां यहाँ हुई हुए।
2: हाँ बीमारियां तरह तरह की बीमारियां दवाइयां हुए दवाई जितनी कम काम में ले तो बढ़िया रहे।
1: तो थे कुल मिला रो कहनी चाहोगे अपने जैविक खेती करनी चाहिए जिका अपन का बटेरा करता?
2: हाँ हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल।
1: वाह वाह चंदू जी, थे मांगो इतनी

0: छोकी छोकी बातें करी था को घणो मानो धन्यवाद राम राम सा
1: राम राम सा।
2: तो देखो चंद्र सिंह जी है जी को बड़ी ठावी ठावी बात करी और बताइयो के भाई आपन है जी को के जैविक खेती करनी चाहिए क्योंकि अबार देखा के भाई अंधा धुंध लोग है जी को के खेती के मायने जी को छिड़काव करे और अबार देखो के कैंसर हुआ, स्किन की बीमारियां हुई, हार्ट अटैक हुआ, ये सब बीमारियां है जी को के जहर छिड़के हुई हुआ करे। तो अपन है जी को के उत्पादन वो कहवे ना कम भले ही हो पर गुणवत्ता हुए नहीं वो घणो अपांग मायनो रखा करे। तो अबार हबे जिको मार किसान भाई उड़ी राखे के भाई राकेश भाई आया है राज कई लाया है तो थांगवास से ले रही हूँ भजन।

तुम्हारे भाया ने ओ माता जी रो भजन जरूर दाय आयो। और आबार देखा जटे चारू मेर हरियाली हरियाली दिखे, सगड़ा ही आपा ने है जिको हरियाली मायने चोको कितो लागे। पण आपा हरियाली जद ही राख सका जद आपा पर्यावरण ने संरक्षण देवा। ओ काई हुए इर माते आपा थोड़ी एक बंतल करा कि भाई प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि जल है, वायु है, मिट्टी है, वन है और जीवन है जिको प्रदूषण हूँ है जिको बचाणो। और इरे सागे इरो मुख्य उद्देश्य है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए राखणो, जिको आपा का जिका प्राकृतिक संसाधन है बैंको आपा के संरक्षण हो सके और पृथ्वी पर जीवन है जिको बिना रुके आपा के चाल सके। आपा है जिको के सब पहली तो आपा है जिको प्रदूषण माते नियंत्रण राखणो। प्रदूषण हवा को भी है, पानी को भी है, मिट्टी को भी है, यानी सबा ने आपा ने जिको प्रदूषित हो है जिको बचावणो है। इरे अलावा प्राकृतिक संसाधना को बचाव यानी कि जल, ऊर्जा और खनिज है ब्याने है जिको आपा ने बुद्धिमानी उपयोग करनो चाहिए। और जे विविधता की रक्षा यानी कि जिका आपा के पेड़ पौधा या जीव है वन्य जीव बे जिका आपने समाप्ति की ओर है विलुप्त यानी कि लगभग खत्म हो गए ब्याने आपने संरक्षण देवण है। इरे अलावा है जिको जलवायु परिवर्तन को शमन करनो यानी कि ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन ने कम करनो और तापमान की जिकी वृद्धि है बिने भी आपने रोकणो चाहिए। इनमें सब ज़्यादा सहयोग है जिको आप पेड़ पौधा लगार और वृक्षारोपण कर आप है जिको इन्हें अपने बढ़ोतरी दे सका कि आप पर्यावरण संरक्षण में इन्हें सहयोग कर सका। अपन है जिको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा तो आप है जिको पर्यावरण है जिको सुरक्षित और संरक्षण कर सका। अब देखो कि घड़ी कने जो जने घड़ी कहे कि भाई आज बाजार भाव को तो बाजार आज नागौर मंडी में बाजार भाव है देखो मूंग रा भाव अपने 5,500 ले 7,700 तई, काला तिल रा भाव 9,000 ले 9,500 तई, सफेद तिल रा भाव 10,000 ले 11,000 तई, जवार रा भाव 4,500 ले 5,500 तई, गवार रा भाव 5,000 ले 5,650 तई, और अपने है जिको तारा मीरा रा भाव 5,600 ले 5,725 तई, जीरा रा भाव अपने है जिको 17,000 ले 22,000 तई, दाना मेथी रा भाव 5,700 ले 6,100 तई, इस सब गोल रा भाव 9,000 ले 13,450 तई, सौंफ रा भाव 7,000 ले 11,500 तई, चीना रा भाव 5,000 ले 5,300 तई, असलिया रा भाव 5,800 ले 6,000 तई, हिंदी हुआ रा भाव 6,000 ले 7,600 तई। ए आपने नागौर मंडी में आज रा भाव हा जिका भी किसान भाइयों ने भाव दाय आया है तो भाई नागौर मंडी में लार और आप रहे जिको मुनाफो कमा सके। आपा बार बातचीत कर रहा है कि भाई पर्यावरण संरक्षण की तो पर्यावरण संरक्षण में आपा है जिको जल संरक्षण भी आपा ने करना चाहिए कि भाई आपा कई यहाँ की आदत हुए कि भाई दातन करे तो या डाडी करे तो आपा टूंटी चलू ही राखा बी की बजाय आपा है जिको एक डब्बो राख लेना चाहिए कन्ने मग्गो भर राख ले आप दातन करे बी खुल्लो कर ले तो वो काई हुई हो कि कम पानी है जिको आपा है बचत कर सका और भी कम पानी है जिको आपा पूरो आपा के साफ भी हो जाए और आपा के पानी की भी बचत हो जाए। इरे सागे जान गाड़िया है ट्रैक्टर है आपा धोवा तो पानी पाइप रो लेयर खड़ा हो जावा और भी दे दे पकड़ धोला बी के बजाय आपा जे बाल्टियों धोवा बाल्टियों है देखो पानी की बचत भी हो जाए सागे है जिको साफ भी छोको हो जाए। इरे अलावा आपा जान भैंसा ने नवावा तो काई करा पाइप रो लेला बी के बजाय छोको भी ना है जिको रगड़ बाल्टियों आपा जे नवावा तो पानी री बचत हो जावे। और अबार देखो के चौमासा रो टेम है बरसात अबे घणी आवे है आई राम जी घणी दे तो यो बरसात रो पानी है जिको आपने है जिको आपने संचित करनो चाहिए। अब घड़ी कने जो जने घड़ी कहे राकेश भाई खेती बाड़ी रो तेवड़ो टाइम अटे हुए पूरो तो आपने राकेश भाई ने दिराओ सीख करा राम राम।

श्रोता हूँ, अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM में 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 होने को है। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
2: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की प्रतीत।
3: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
2: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
3: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
2: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
3: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
2: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
3: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
4: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
2: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
7: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
2: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
8: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
9: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
2: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
2: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
11: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
12: आग का गोला?
11: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे, लगे मैं चलता जाता हूँ।
12: ये कैसी पहेली है? ये
11: लाइट कर दे। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ, दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
12: सूरज।
11: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
12: बहुत आसान पूछते हो।
11: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
12: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
11: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
12: हाँ।
11: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
12: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
11: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
13: वो तारा होता है।
11: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
14: वो रात और दिन भी बनाता है।
11: एकदम सही एकदम सही।
13: वो हमें धूप भी देता है।
11: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
12: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
11: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
12: विटामिन डी।
11: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत
13: और
11: अच्छे।
13: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
11: हाँ बिल्कुल।
12: पेड़ों को खाना भी देता है।
11: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
12: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
11: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
12: हाँ।
14: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
11: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
12: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
11: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
12: वो तेज चलती है, तो ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
13: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
11: ना।
13: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
11: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चो सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
12: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
11: बहुत बड़ा होता है
13: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
11: हम क्योंकि कहीं
12: दूर होता है, इसलिए
11: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
12: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
11: हाँ
13: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
11: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
15: सर्दी।
11: ओह ऐसी वाली सर्दी ना।
12: हाँ।
11: अच्छी लगती है सर्दी।
12: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
11: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
13: नहीं
11: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
15: सूरज आग का गोला लेकिन
11: फिर भी जीवन दाता है।
15: फिर भी जीवन दाता है।
11: धरती काटे चक्कर इसके।
15: धरती काटे चक्कर इसके।
11: लगे ये चलता जाता है।
15: लगे ये चलता जाता है।
11: सर्दी गर्मी बनते इससे।
15: सर्दी गर्मी बनते इससे।
11: ये दिन रात बनाता है।
15: ये दिन रात बनाता है।
11: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
15: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
11: सूरज ये
15: कहलाता है।
11: शाबाश सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
12: मौसी कर पहेली आज ही बता दो।
11: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
13: जल्दी आना मौसी।
11: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
12: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
11: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
12: वो भी दस पूछेंगे।
11: दस दस पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
12: है। और आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
11: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
13: नहीं, 80 हो जाएंगे।
11: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम फिल्मी गजलें और कव्वालियों की ओर, और शुरुआत करते हैं फिल्म गेस्ट इन लंदन से। आवाज़ सुमित आनंद और अमित मिश्रा की है, संगीत अमित मिश्रा का और गीत लिखा है सेंट शाह हुसैन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और गीत लिखा है अनजान ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल्ली 6 से। आवाज़ जावेद अली और कैलाश खेर की है, संगीत AR रहमान का और गीत लिखा है परशुन जोशी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं AR रहमान, जावेद अली और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म रॉक स्टार से। संगीत AR रहमान का और गीत लिखा है चिंतो केरेजो ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मुगले आजम से। आवाज़ लता मंगेशकर और शमशोद बेगम की है, संगीत नौशाद का और गीत लिखा है शकील बदायूनी ने।

साथियों, कार्यक्रम का ये अंतिम नगमा आपने सुना लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म मुगले आजम से। संगीत नौशाद का और गीत शकील बदायूं का। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 8:30 में अब हम आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की ओर और सुनवाते हैं फिल्म संगीत में गाने नए जमाने के। साथियों, शुरुआत करते हैं फिल्म वांटेड से। आवाज़ वाजिद और सुनिधि चौहान की है, संगीत साजिद वाजिद का है और गीत लिखा है साबिर अहमद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म मिक्की वॉरियर से। संगीत हनीफ शेख का है और गीत लिखा है हनीफ शेख ने।

साथियों, ये नगमा आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म मेकी वायरस से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म खोसला का घोसला से। आवाज़ कैलाश खेर की है, संगीत ध्रुव धाल का है और गीत लिखा है जयदीप साहनी ने।

0: साथियों, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपने सुने गाने नए जमाने के। उसमें आपने ये गीत सुना कैलाश खेर की आवाज़ में फिल्म में घोसला का घोसला से। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
3: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
1: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
4: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना

0: जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आप सुनेंगे गुलाम अली को।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आपने सुना गुलाम अली को। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:15 होने को है। अब हम आपको ले चलते हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरली धड़कन की ओर। सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और मुबारक बेगम की आवाजों में वो नख्मा जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है हमराही।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का और फिल्म का नाम है मुगले आजम।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी मन्नाडे और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है रोशन की, फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ

0: रहता मैं डट के रहता मैं आया है राजा
1: लो गोरे लो गो
0: राजा के संग संग
1: तुम लो
0: आया है राजा
1: लो गोरे लो गो
0: राजा के संग संग
1: तुम लो
2: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।
3: वो तो

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 बरस की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वर्धराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव गांव शहर शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे

राजा जोड़ा सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिंथई किलंथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलियाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या शोर से बजी है।

और फिर आई फिल्म शमिताभ, जिसके गाने लिखे स्वानंद किरकिरे ने, और इस फिल्म में था ये दिलचस्प गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैयाराजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैयाराजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

क्योंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गवाए।

इलैयाराजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे, तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है, और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहां तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहां इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैया राजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैया राजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहन लाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैया राजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैया राजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैया राजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलिया राजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेज श्री कामले।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन FM 103.7 MHz पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। अब आपसे फिर मुलाकात होगी प्रातः 8:49 पर। तब तक के लिए हमें अनुमति।